मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं, अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

हम प्रभु को यहाँ वहाँ मंदिर में खोजते हैं, जबकि हम ध्यान दें तो प्रभु हमारे मन में ही विराजमान है। ईश्वर कण कण में है, हम सभी ईश्वर पर निर्भर हैं।

0: अभी आप अनुराधा पौडवाल, पंडित जसराज, नितिन मुकेश और सोनू निगम के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से

0: खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार।
6: भाइयों और बहनों, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे अब कुछ ज्यादा कहना नहीं है। आपने बहुत चीजें सुन ली हैं और सब बातें जो बताने की थी वो बताई जा चुकी हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि रेल जो बन रही है इससे हमारी आर्थिक उन्नति होगी, दौलत बढ़ेगी, लोग एक दूसरे से मिले जुलेंगे, आना जाना सहल हो जाएगा, माल जा चल जाए, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकेगा, कारोबार बढ़ेगा, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात है जो आपको करनी है और वो रेलवे नहीं कर सकती है। रेलवे आपके आने जाने को आसान बना देगी लेकिन आपके दिलों को नहीं मिला सकती, दिल आपको खुद मिलाने होंगे। आपकी रेलवे आपके माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। यहाँ जो दौलत गड़ी हुई है, इस इलाके में गड़ी हुई है, वो सब निकलेगी और रेल उसको ले जाएगी और उस जगह पहुँचा देगी जहाँ उसे पहुँचना है। लेकिन आपकी छातियों में, मेरी और आपकी छातियों में उन चीज़ों से ज़्यादा कीमती चीज़ है, कोयले से और बॉक्साइट से और लाइमस्टोन से ज़्यादा कीमती चीज़ है, एक सोना है हमारी छातियों में, वो देश प्रेम का और देश सेवा का सोना है। उसकी कान को खोदना चाहिए, उसकी कान को खोदना चाहिए और उसको सारे देश में बिखेरना चाहिए और मालामाल कर देना चाहिए। हाइड्रोलिक वर्क्स होंगे, पानी बहुत मिलेगा, लेकिन दिलों की बस्ती को कौन लहराएगा? खेत तो लहलाए जाएंगे लेकिन दिल मुरझा न पाए। इसलिए जब कभी भी आर्थिक उन्नति का काम हो तो याद रखना चाहिए कि उसके साथ आत्मिक उन्नति का काम भी होना चाहिए, और वो आप ही की कोशिश से और आपकी मेहनत से हो सकता है। अगर वो होगा तो ये सब चीज़ सफल है, और नहीं तो सारी आर्थिक उन्नति, अगर आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी तो सारी आर्थिक उन्नति हमारे हाथ में नहीं रहेगी और ख़राब हो जाएगी, हमको और ख़राब कर देगी। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आज जब ये एक नया काम हो रहा है जिससे आपकी आर्थिक विकास में बहुत मदद मिलेगी, उसके साथ साथ आप ये भी सोचें कि अपने आत्मिक विकास की फिक्र करें और अपने देश को एक अच्छा और सच्चा और नेक देश बनाएं। जय हिंद।
4: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं बाग लगाते समय सावधानियां विषय पर डॉक्टर विश्वनाथ से चंद्रजीत यादव की बातचीत।

0: किसान भाई देखा आप सब तरह तरह के भाई खेती करत है, बागवानी करत है। निश्चित तौर पे भाई अगर बागवानी की बात की जाए तो जौन भाई समय चलत बे, इस समय में बागवानी में अगर नए नए पेड़ पौधा के आप सब रोपा तो निश्चित तौर पे भाई वो पौधा पकड़े के ज़्यादा गुंजाइश होत है और आप सबके फ़ायदा भी ज़्यादा मिले। तो भाई देखा जौन बाग बाटे ओकर जौन लगावे की बात की जात है, लगाव समय कौन कौन बातन पे विशेष तौर पे ध्यान दे चाहे का सावधानी आप सबके बरते चाहे, देखा ही विषय पे बातचीत करे के लिए आज हमारे साथे बाटे हैं डॉक्टर विश्वनाथ भैया जौन यही कुल के विशेषज्ञ हैं। भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे और हम आपसे जानना चाहब भैया कि हमारे बागवान भाई कौन कौन बातन पे ध्यान दें बाग लगाव समय, का सावधानी बरतें भैया?
1: भाई वर्तमान में बागवानी बृहद व्यवसाय का रूप ले चुकी है। फल वृक्षों से गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करना शुरुआत में बाग की स्थापना पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
0: जी
1: सुविचारित तरीके से स्थापित बाग कम से कम 50 से 60 वर्षों तक उत्पादन देती है।
0: बिल्कुल।
1: अतः बाग की स्थापना एक कौशल एवं विपे पूर्ण कार्य है, खास तौर से तब जब पौधरोपण का कार्य किया जाना हो।
0: जी।
1: रोपण के समय की गई गलतियों का निराकरण बाद में संभव नहीं होता, क्योंकि स्थापित वृक्षों को हटाना या काटा जाना उचित नहीं है। बाग स्थापना के समय की गई गलतियों के कारण उपज गुणवत्ता एवं उत्पादन अवधि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिस कारण बागवान भाइयों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। अतः पौधरोपण के समय बरती जाने वाली सावधानियां बताई जा रही हैं, बागवान भाई इस पर ध्यान दें ताकि पौधरोपण में गलती न हो और बाग लंबी अवधि तक उत्पादक बनी रहे।
0: डॉक्टर साहब ये बताओ, जैसे अगर गड्ढा की बात की जाए जौन में पौधा के रोपाई करेगी किसान भाई के, उसमें का कुछ ध्यान दे चाहे उन्हें?
1: बागवान भाई सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि जो गड्ढा खुद चुका है उसकी भराई हो चुकी है तो वो अच्छी तरीके से भली भांति उसकी मिट्टी बैठ चुकी है या नहीं, क्योंकि बिना मिट्टी बैठे रोपण करने से पौधा मिट्टी सहित गड्ढे में धंस जाता है, जिससे कई समस्या उभर कर आती है।
0: जी, जी।
1: एक तो पौधा टेढ़ा या तिरछा हो जाता है, जिससे आगे चलकर उस पौधे का सही विकास नहीं होता और उपज प्रभावित होती है।
0: जी, जी।
1: दूसरी बात यह कि पौधे का

0: एप्ट बिंदु जहाँ पर वो कलम की गई होती है,
1: हाँ
0: जिसे कटिंग या ब्रडिंग ग्रेफ्टिंग होती है,
1: जी,
0: भूमि की सतह पर वो उसे करीब आ जाता है, जिससे रोगाणु के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है तथा पौधा शीघ्र मर जाता है। अतः पौधरोपण का कार्य गड्ढे की मिट्टी पूर्ण रूप से बैठने के बाद ही करें।
1: का है मतलब भैया कि अगर भाई कलमी पौधा लगावत बाटे किसान भाई, तो जहाँ कलम जुड़ी रहत है वो अगर माटी के नज़दीक आ जाए तो हमें किड़वा लागे की संभावना बढ़ जाए, तो ऐसे स्थिति में उनका नुकसान हो सकता
0: हाँ
1: है।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: अब डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहें कि पौध के चयन में का कुछ सावधानी बरते चाहिए।
0: देखिए भाई, पौध जब चयन करना है, उसे खरीदना है, तो पहली बात तो सदैव रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदें।
1: जी
0: जिस किसी भी फल पौधे का रोपण करना हो तो उसके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे वो किस प्रजाति का पौधा है
1: हाँ
0: और पौधे की क्या उम्र है,
1: जी
0: माध वृक्ष की क्या दशा है,
1: जी
0: पौधा पॉलीथीन में लगा है या नर्सरी से खोदा गया है, इन सब की जानकारी करना अति आवश्यक है। अतः बागवान भाई जब भी पौधा खरीदने जाएं, तो नर्सरी पर एक नर्सरी रिकॉर्ड होता है, उस
1: जी
0: रिकॉर्ड को देखें और नर्सरी रिकॉर्ड देख करके सब पता कर लें कि पौधे की क्या स्थिति है। और प्रत्येक नर्सरी के पास ये रजिस्टर होता है जिसमें सभी बातें दर्ज होती हैं
1: जी जी
0: और उससे सारी जानकारी हो जाती है।
1: का मतलब भैया कि मान्यता प्राप्त जौन कही जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन जौने नर्सरी खोए भैया, वो नर्सरी से अगर पौध लेही तो ज़्यादा संभावना होए कि जौने प्रजाति के पौधा उनसे आपके कह के मिले, जौने गुणवत्ता के मिले वही गुणवत्ता का पौधा आपके प्राप्त हो जाए।
0: बिल्कुल सही है।
1: डॉक्टर साहब एक बात और बताऊँ, जैसे कि पौध के चयन के लिए किसान भाई अब ओका रोपण करे की बात आवत है, वैसा स्थिति में का कुछ सावधानी बरते चाहिए।
0: भाई किसान जो तैयार गड्ढा है और उसकी मिट्टी बैठ चुकी है, तो गड्ढे के बीचों बीच जो पौधा है, पौधे के पिंडी के आकार का गड्ढा खोदें
1: जी
0: और पौधे की पिंडी जो पुआल आदि से बंधी होती है या उसमें पॉलीथीन लगी हुई होती है
1: जी जी
0: को सावधानी पूर्वक खोलें। ध्यान रखें कि पिंडी टूटना नहीं चाहिए। अब
1: अच्छा
0: पौधे को खुदे हुए गड्ढे में पिंडी सहित इस प्रकार से रखें कि पौधा बिल्कुल सीधा हो। इस कार्य के लिए प्लांटिंग बोर्ड आता है, उसका उपयोग करें तो अच्छी बात है।
1: डॉक्टर साहब कभों कभों सही कहत बैठे किसान भाई ध्यान ना देते हैं, जवन पुआल वगैरह भैया पिंडी के चारों तरफ लगा हो तो वैसे वो डाल देते हैं, वैसे जो है पौध को लगा देते हैं,
0: हाँ
1: तो ये तरीका ठीक ना हो ना।
0: नहीं, उसको हटाना आवश्यक है।
1: जी, और भैया
0: पौधों के चारों ओर मिट्टी डालकर हाथ से थपथपा दें ताकि मिट्टी बैठ जाए और पौधा सीधा खड़ा रहे।
1: जी
0: पौधा टेढ़ा या तिरछा होने पर आगे चलकर उसका सही विकास नहीं हो पाता, जिससे फसल नहीं अच्छी होती और फलत प्रभावित होती है।
1: जी
0: पौधे का रोपण के समय जो ग्रेफ्ट बिंदु है, जहाँ पर ग्रेफ्टिंग की गई है, बडिंग की गई है,
1: जी,
0: भूमि से कम 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो।
1: अच्छा
0: ऐसा ना करने पर रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। ग्रेफ्ट बिंदु पर फंगस के आक्रमण के कारण सड़न पैदा हो जाती है
1: जी,
0: और पौधा शीघ्र ही मर जाता है।
1: तो उसी नुकसान हो गया भैया।
0: हाँ बिल्कुल
1: जी
0: नुकसान, इसलिए वो 15-20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होना चाहिए।
1: अच्छा
0: रोपण के समय जो ग्रेफ्ट है या बड़ वाला हिस्सा है, सदैव पश्चिमी दिशा में रखना चाहिए,
1: अच्छा अच्छा
0: क्योंकि गर्मियों में पश्चिमी ओर से तेज हवा या लू चलती है, जिसके कारण विपरीत दिशा में लगे पौधे के कलम वाला हिस्सा
1: जी
0: जहाँ पर जोड़ है, उस स्थान से पौधे के टूट जाने की संभावना होती है।
1: यो भैया ध्यान दें कि ऐसा स्थिति में लगाओ जहिया तेज हवा से कोनो नुकसान न हो
0: न
1: पाए।
0: हो
1: जी
0: रुपाई के तुरंत बाद पौधे को पानी देना नितांत आवश्यक है, तत्पश्चात बरसात के अनुसार पौधे को पानी देते रहें।
1: हाँ, जैसे जरूरत हो भैया, जब देखें नमी ना बैठे तो ऐसा स्थिति में फिर सिंचाई करत रह जाए। और भैया
0: और जो पॉलीथीन में पौधे लगे हैं उनका रोपण तुरंत किया जा सकता है,
1: जी
0: और जो पौधे नर्सरी से खोदे गए हैं उनका रोपण तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुरंत खोदे गए पौधों की जड़ें चोटहिल होती हैं
1: जी
0: और पौधा जल्दी से जड़ नहीं पकड़ता। अतः नर्सरी से खोदे गए पौधों को 3 से 7 दिनों तक छाया में रखते हैं।
1: जी
0: पिंडी को पुआल आदि से ढककर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं।
1: जी
0: ऐसा करने से दूसरी जड़ें निकल आती हैं, तब रोपण करने से पौधा शीघ्र स्थापित हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहत बाटी, देखे में आओ तो भाई कि कभों कभों भाई नर्सरी से पौधा तक किसान भाई ले आवत घरे, लेकिन ओकर रोपण करे में कुछ उनका समय लग जाता है कई कारण से, तो ऐसे स्थिति में पौधा उनके घर भी सुरक्षित रहे का कुछ ध्यान

0: देख पड़े उन्हें।
1: देखिए, हमने अभी बताया ना कि
0: जी
1: जब वो पौधा नर्सरी से ले आते हैं तो उन्हें वो छाए में रखें, और
0: अच्छा
1: छाए में रख करके उस पर पुआल घास डाल करके पिंडी को ढक दें
0: जी
1: और समय समय पर उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। ऐसा करने से पौधा लंबे समय तक जीवित रहता है,
0: जी
1: और वो आप उसे 10 दिन 15 दिन बाद भी उसकी रोपाई या रोपण कर सकते हैं,
0: जी
1: और यदि वो ऐसा नहीं करते तो पौधा सूखने लगता है।
0: एक चीज़ है डॉक्टर साहब और जानना चाहत बाटे, जैसे आंवला के पौधा बा के किसान भाई लगावे चाहत बाटे, तो ऐसा स्थिति में नर्सरी से लियाए के बाद ओकर रोपाई करत समय का कुछ ध्यान दे जाए उन्हें।
1: देखिए भाई, जैसे आंवला हुआ,
0: जी
1: बेर हुआ, इसके पौधे जैसे नर्सरी में खोदे गए
0: हाँ
1: और आप उसको ले आए,
0: जी
1: तो इन पौधों को निश्चित रूप से 1 सप्ताह तक छाए में रखना चाहिए,
0: अच्छा
1: और जब उनको छाए में रख दिया जाता है तो इस बीच उनकी पत्तियां गिर जाती हैं।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पौधा मर गया या सूख गया,
0: जी जी जी
1: है ना।
0: हाँ
1: सप्ताह भर के भीतर उसमें से दूसरी पत्तियां निकल आती हैं,
0: जी
1: और जब दूसरी पत्तियां निकल आएं तब उस पौधे का रोपण करना चाहिए। हाँ,
0: अच्छा, ये ध्यान दे चाहे भैया कि नर्सरी से पौधा के लियावें जब घरे तो उका 1 सप्ताह तक रखे रहें, और उन्हें भैया उस समय पिंडी में पानी उनी की सिंचाई हल्की करे पड़े।
1: अरे बिल्कुल करना पड़ेगा। पानी नहीं देंगे तो पौधे में जो जड़ें हैं खुराक कहाँ से लेंगी, पानी
0: जी
1: तो उनको छिड़काव करके देने देना है।
0: तो इस तरह से अगर पौध के रोपण करी सावधानी बरते ही किसान भाई तो ज़रूर भैया उनका फ़ायदा होए। आप भैया आए ना और इतना बढ़िया जानकारी दें, सब जानकारी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे बाग लगाते समय सावधानियां विषय पर डॉक्टर विश्वनाथ से चंद्रजीत यादव की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। लीजिए सुनिए डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। विषय है स्तनपान बच्चों के लिए कितना लाभदायक। आज आप सुनेंगे कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: डॉक्टर अर्चना, मैं 2-3 प्रश्न एक साथ जोड़ करके पूछ रहा हूँ। आजकल हम देखते हैं कि माँ और बाप अमूमन दोनों ही वर्किंग होते हैं, क्या ऐसे में इतनी जिम्मेदारी के साथ बच्चे को स्तनपान कराना संभव हो पाता है? अगर हाँ तो कैसे? और दूसरा प्रश्न कि अगर किसी माँ को दूध कम बन रहा है तो क्या वो कुछ ऐसे आहार विहार साथ में ऐसे ले, कोई जीवन शैली में बदलाव करे जिससे उसका काम और उसका उसकी जो एक जिम्मेदारी है उसके बच्चे के प्रति वो दोनों प्रभावित ना हो और बच्चे को जो भोजन मिल रहा है दूध के रूप में वो पूरी मात्रा के साथ मिले।
2: पहली चीज़ तो ये है कि जैसे वर्किंग, बेसिकली वर्किंग पेरेंट्स के लिए हो गया, और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग
1: जी।
2: उसमें क्या है, फादर के ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी नहीं पड़ती क्योंकि फीडिंग तो नेचुरली मदर का ही काम है। फीडिंग के लिए उनको सबसे पहले खुद को एक तो तैयार रखना है, मेंटली फिट रखना है कि हमको कराना है। तो मदर शुड बी मोटिवेटेड एवरी टाइम, जब भी डॉक्टर्स के पास आते हैं तो उनको मोटिवेट करना चाहिए कि यू आर डूइंग वेरी गुड और आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आप करा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव होती है। प्राइवेट सेक्टर में लीव कम होती है पर फिर भी 2-3 मंथ्स की लीव मिलती है। 3 मंथ्स के बाद जैसे मदर का एक वर्किंग एटमोसफियर है कि आपको 6 घंटे के लिए जॉब पे जाना है, आपको 10 घंटे के लिए जाना है, दैट डिपेंड्स कि मदर को कितने घंटे की जॉब करनी है। तो आप उसको जो है ऊपर से अपना दूध आप स्टोर करके जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे आप ऑफिस में आप 6 घंटे के लिए बैठे हैं तो एक रूम आप अपना वहां पे ले सकते हैं, और हर जगह ऑफिस में होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, कहीं कहीं होता भी है नर्सिंग मदर के लिए कि आप स्टरलाइज तरीके से आप अपना मिल्क स्टोर कर लें, उसको आप डायरेक्टली फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आप उसको बस ये कि सेफ्टी से रखना है कि कहीं से उसमें इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद उसको आप घर में ला करके फ्रिज में ही अगर आप रखते हैं उसको तो नेक्स्ट डे आप उसको यूज कर सकते हैं।

0: इन द एब्सेंस की मदर जब ऑफिस गई है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मदर का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो घर में भी बच्चे के पीने के बाद या 2 घंटे के बाद, बच्चा अगर 4 घंटे सो रहा है, इन बिटवीन मदर अगर चाहे तो वो 1 घंटा 2 घंटा स्क्वीज करके मिल्क निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे बच्चे को कहा जाता है हर 2 घंटे पे दूध पिलाइए, लेकिन हर 2 घंटे पे नहीं, ये डिपेंड करता है बच्चे का वेट कितना है। जैसे प्री मेच्योर बच्चे में तो हम कहते हैं कि 2 घंटे में उठा उठा के पिलाइए, कई बार स्मॉल फ्रीक्वेंट बच्चे लेते हैं तो कई बार 1 घंटे 1.5 घंटे में भी हम कहते हैं उठा के पिलाइए।
1: जी
0: बच्चा कमज़ोर है, वजन से कम है, कई बार बच्चा वो सुस्त भी हो सकता है बिना दूध पिए। लेकिन जो बच्चे पूरे समय में पैदा हुए हैं उन बच्चों को हम कोई टाइमिंग नहीं देते, ऑन डिमांड फीडिंग कहते हैं कि
1: जी
0: जब बच्चा उठे और रोए या दूध मांगे उसी समय दूध पिलाना है आपको। ओवर फीडिंग कई बार हो जाती है मदर से, उसका रीज़न ये है कि जैसे उनको ये समझ नहीं आता कि बच्चा भूखा कब है। बच्चा शुशु करेगा तो भी रोएगा, बच्चा पॉटी करेगा तो भी रोएगा, तो मदर हर कंडीशन में उठा के उसको फीड करा देती, तो ये ओवर फीडिंग की भी केसेस आते हैं कई बार।
1: कुछ एक ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब माँ को मना करते हैं डॉक्टर्स आप लोग की इस समय फीडिंग ना कराएं।
0: हाँ, अगर जैसे मदर को अगर लोकल ब्रेस्ट में कोई एब्सेस है, कुछ इस तरह की बीमारी है, तो हम लोग मना करते हैं। अदरवाइज़ कंडीशनल होता है, जैसे HIV पेशेंट में भी हम लोग मना करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए,
1: जी
0: लेकिन हमारे इंडिया में सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कई बार हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही है। तो कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें हम मना करते हैं, या मदर बहुत सिक है तो उस कंडीशन में मना करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि समाज की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, खासकर जहाँ पर परिवार बड़े हैं या छोटे हैं, या बच्चे छोटे हैं, बाकी माँ बाप आ जाते हैं अपने बच्चों के पास, कि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। दूसरा एक चीज़ इसमें और है, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं स्तनपान को लेकर के, जो ज़्यादातर महिलाओं में ही है। वो क्या है, आपके पास ऐसी बातें आती रहती होंगी, आप बताएं क्या ये सच है, ऐसा होना चाहिए?
0: भ्रांतियों के बारे में जैसे आपने पूछा, सिंपल सा होता है कि जैसे बच्चों को पीलिया होता है, यूजली पीलिया जो होता है बच्चों को फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब कि ये होना ही है ड्यू टू इमेच्योरिटी, कुछ लिवर इमेच्योर होता है इसके कारण होता है बच्चों को, जो कि कुछ समय के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। समटाइम्स इतना होता है कि पीलिया एक लेवल से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग पैथोलॉजिकल कहते हैं कि उसका कुछ कारण होता है जिसमें हमें इलाज करना पड़ता है।
1: जी
0: उसमें भ्रांति होती है कि मदर्स हमारे पास आती हैं कि अगर बच्चे को पीलिया है तो हम पीली चीज़ें नहीं खाएं, हम हल्दी बंद कर दें खाना, जबकि ये सब मिथ है, खाना चाहिए, क्योंकि हल्दी से आपको जो है नेचुरली कर्क्यूमिन मिलता है, आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है,
1: जी
0: तो वो खाने में कोई परहेज नहीं है। आप बच्चे को जितनी चीज़ें, मतलब मेरा तो ये मानना है, आप
1: जी
0: जितना चाहते हैं कि बच्चे को पोषक तत्व आप देना चाहें, मदर को वो सब चीज़ें खानी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ खाने से बच्चे को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। विषय था स्तनपान बच्चों के लिए कितना लाभदायक, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में, रात 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कृत भारती और रात 10 बजे सुनेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 8:20 पर आप सुनेंगे इस सप्ताह विधानमंडल में, ये कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 7 बजे सुनेगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन और दिन में 12:15 पर रामशंकर का गायन। सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर श्रुति सिंह चौहान के स्वर में भजन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे लोकमाधुरी कार्यक्रम में भरत लाल और साथी के स्वर में लोकगीत और दोपहर 2:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे राकेश कुमार और साथी। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। आज आप सुनेंगे

प्रख्यात साहित्यकार कमलेश्वर से अजीत कुमार की भेंट वार्ता। सुबह 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। दिन में 12:30 पर सुनेगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी पनघट कार्यक्रम में नेहा गुप्ता की वार्ता, ना करें भोजन की बर्बादी। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे राजवंत सिंह और साथी। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर सुनेगा कार्यक्रम पंचायत घर। शाम 6:50 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनेगा डॉक्टर नीरज सिंह की वार्ता, स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक एवं आर्थिक महत्व। रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए नीलकमल फिल्म का ये भजन। आशा भोसले की आवाज़ में संगीत रवि का है और रचना है साहिल लुधियानवी की।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए लगान फिल्म में उदित नारायण और लता मंगेशकर को, संगीत ए आर रहमान का है, रचना है जावेद अख्तर की।

अभी आपने सुना लगान फिल्म का ये भजन उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इसी के साथ ही फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। संसद ने पारित किया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। भुगतान में देरी और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाएगा ये विधेयक। मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर नगर में 194 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा अम्बेडकर नगर। और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अभी आगामी 5 दिनों तक और बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। वस्त्र मंत्रालय के इस कार्यक्रम में वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए कई पहल की है।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले।
0: कार्यक्रम में वाराणसी के नसीम अंसारी को इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी बुनाई में उत्कृष्टता के लिए बुनाई श्रेणी में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं शाह मोहम्मद अंसारी को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार लुप्त प्राय बुनाई श्रेणी में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों बुनकरों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट शिल्पकारों और बुनकरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना और झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हथकरघा और पावरलूम से करीब 30 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है। सरकार ने 40,000 से अधिक हस्तशिल्पियों को विद्युत सुविधा के रूप में 109 करोड़ रुपए का लाभ दिया है। श्री योगी ने हथकरघा उत्पादों को डिजाइन, तकनीक, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को उपहार में देने की अपील भी की।
2: हमारा प्रयास यही होना चाहिए, विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं, बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट कर। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें और

0: इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए।
1: संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अंबेडकर नगर में 706.81 करोड़ रुपए की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अंबेडकर नगर विकास के मॉडल के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंबेडकर नगर को एक्सप्रेसवे से जोड़कर जिले में विकास को गति दी है। सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु भी अंबेडकर नगर को बनाया जा रहा है।
3: नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थ नगर के बांसी से होते हुए, बसी होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने और चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको प्रयागराज तक जाएंगे।
1: नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कल प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के साथ बैठक की। इस दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी और सतत बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रतिदिन विद्यार्थियों को नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही रन फॉर नशा मुक्ति, मैराथन, नुक्कड़ नाटक जैसी जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए पूरे प्रदेश को 5 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक सुनिश्चित की जाएगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: बैठक में ये भी तय हुआ कि सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्रावास, कैंटीन और पूरे परिसर का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन डिलीवरी और कुरियर से आने वाली सामग्री की प्रवेश द्वार पर ही जांच होगी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी अन्य माध्यमों से कोई नशीला पदार्थ परिसर में ना पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। उधर पहाड़ी क्षेत्रों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर और आजमगढ़ में गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण 80 घाट पर होने वाली आरती के स्थान को 10 फीट ऊपर कर दिया गया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वाराणसी के 2 बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। संसद ने पारित किया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। भुगतान में देरी और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाएगा ये विधेयक। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर में 194 करोड़ रुपए

की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा अम्बेडकर नगर। और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने अभी आगामी 5 दिनों तक और बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। धन्यवाद।

मीटिंग वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन, राग है चारुकेशी।

0: रिपोर्ट।
1: तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी इस मीटिंग में तलबा ने भर्ती इम्तिहानात में शफाफियत के अपने मुतालबे को दोहराया और मुबैना बेजाबतगियों, गैर जानबदाराना जाँच पड़ताल और भर्ती के अमल में जामे असलाहत की मांग की। बातचीत में 4 रियासतों के वज़रा और तरक्याती कमिश्नरों ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। वज़रा ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुतालबात के बारे में
0: रिपोर्ट।
1: तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी इस मीटिंग में तलबा ने भर्ती इम्तिहानात में शफाफियत के अपने मुतालबे को दोहराया और मुबैना बेजाबतगियों, गैर जानबदाराना जाँच पड़ताल और भर्ती के अमल में जामे असलाहत की मांग की। बातचीत में 4 रियासतों के वज़रा और तरक्याती कमिश्नरों ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। वज़रा ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुतालबात के बारे में मुस्बत कदम उठाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि मीटिंग के दौरान उठाए गए तमाम मामलात को वज़ीर आला के सामने पेश किया जाएगा। तलबा ने बातचीत को मुस्बत करार दिया लेकिन कहा कि उनका धरना और भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि उनके मुतालबात से मुतालिक तहरीरी फैसला नहीं किया जाता और ठोस कदम नहीं उठाया जाता। इस दौरान वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार तलबा की तशवीश के तई हसास है।

0: सरकारी प्याला सबसे बड़ा मान लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे प्यालों में जो पानी है वो होना चाहिए, तभी ये जल तरंग बच पाएगी।
1: वाह कमलेश्वर भाई, आपने सचमुच एक बेसुरे प्याले में से निकली हुई बेसुरी आवाज का हवाला देकर के ऐसी सुरदार बातें आज हमसे कही हैं, हमारे श्रोताओं से कही हैं कि मन मेरा बहुत ही प्रसन्न है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नहीं, आपका धन्यवाद अजित भाई, और आकाशवाणी का धन्यवाद कि मुझे याद किया।
1: नमस्कार।
2: हमारे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप प्रख्यात साहित्यकार कमलेश्वर से अजीत कुमार की भेंटवार्ता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत कार्यक्रम एक ही कलाकार।
3: ओरे माझी

नमस्कार श्रोताओं, सुरों की इस महफिल में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम एक ऐसी शख्सियत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जिन्होंने भारतीय संगीत को त्रिपुरा के लोकगीतों की सोंधी महक और क्लासिकल की गहराई दी। एक ऐसा संगीतकार जिसने केवल धुनें नहीं बनाई बल्कि हर धुन में एक जिंदगी दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिन देव बर्मन, यानी हम सब के प्यारे बर्मन दादा की।

श्रोताओं, राजघराने में जन्म लेने के बावजूद दादा की आत्मा हमेशा माटी से जुड़ी रही। भटियाली और बाउल लोक संगीत उनके खून में बहता था। जब वे मुंबई आए तो उन्होंने इस लोकगीत की मिठास को हिंदी सिनेमा में ऐसा पिरोया कि लोग झूम उठे। सन 1959 की फिल्म सुजाता का ये गीत आज भी दिल को छू लेता है, जिसे खुद दादा ने अपनी मखमली और दर्द भरी आवाज में गाया था।

श्रोताओं, बर्मन दादा का संगीत सिर्फ ठहराव या दर्द का नाम नहीं था। वो जानते थे कि युवाओं की धड़कन को कैसे पकड़ा जाए। देवानंद और किशोर कुमार के साथ उनकी त्रिमूर्ति ने भारतीय सिनेमा को रोमांस के नए आयाम दिए। बारिश की बूंदें हो या दिल की मचलती भावनाएं, दादा की धुनें हमेशा तरोताजा लगती हैं।

श्रोताओं, दादा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कठिन से कठिन शास्त्रीय रागों को बहुत ही सहज और लोकप्रिय बनाकर पेश करते थे। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में उनका दिया संगीत आज भी सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर माना जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में पिरोया ये नगमा जिंदगी का कड़वा सच बयां करता है।

श्रोताओं, 60 और 70 के दशक में जब नए संगीतकार अपनी जगह बना रहे थे, तब बर्मन दादा अपने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर थे। फिल्म गाइड और आराधना जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि बर्मन दादा का संगीत समय की सीमाओं से परे है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के साथ उनका ये तालमेल आज भी अमर है।

श्रोताओं, समय की घड़ी इशारा कर रही है कि अब इस सुरीले सफर को यहीं विश्राम दिया जाए। बर्मन दादा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी हवाओं में बांसुरी की तान या माटी की सोंधी महक घुलती है, हमें दादा के सुर याद आते हैं।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप संगीतकार एसडी बर्मन के गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

और अब अनु मलिक के संगीत निर्देशन में सुनिए राहत इंदौरी की रचना। फिल्म का नाम इश्क है और आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की।

दिल है कि मानता नहीं। लीजिए इस फिल्म में सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत शिवहरी का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर 12 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीख

0: जीतेगा वो जीतेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi is addressing the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Earlier, Prime Minister Modi conferred degrees on 587 PhD scholars during the ceremony. We now go live to the Prime Minister's address.
0: वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है।

इस सप्ताह संसद में आप सुनेंगे रात 8 बजे संस्कृति भारती कार्यक्रम होगा रात में 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात में 8:20 पर सुनिएगा इस सप्ताह विधानमंडल में।

हिंदी कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर नीरज सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी, स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगी श्रुति सिंह।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आज आप राम शंकर का ख्याल गायन सुनेंगे। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर। बहने पनघट कार्यक्रम

शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में आज आप राजवंत सिंह पटेल और साथियों के गाए लोकगीत सुनेंगे। युवावाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की शाम आपके नाम के अंतर्गत कलाकार होंगे इरफान खान। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिएगा शाम 6:50 पर और हमारा सबरस कार्यक्रम होगा रात में 8:30 पर।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए रामशंकर का ख्याल गायन। प्रस्तुत है राग शुद्ध सारंग में ख्याल, कलाकार रामशंकर। तबले पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार भट्ट।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप रामशंकर से राग शुद्ध सारंग में ख्याल सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्रवण कुमार भट्ट। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश। पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मैम, हमारा नाम है बचन्ने सरोज। हम ग्राम शिवगढ़ तुरी पोस्ट मछेहा हरदोपट्टी तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़ ब्लॉक बाबागंज से बोल रहे हैं मैम जी।
0: जी
1: नमस्कार
0: नमस्कार, जी नमस्कार, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: जी मैम, आज हमको सुनना है, मूवी का नाम है सरस्वती चंद्र,
0: जी
1: जिसमें स्वर गाया दिया है को मुकेश और लता मंगेशकर ने। गाने के बोल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, क्या नहीं मेरा दिल है।
0: बहुत ही सुंदर गाना है, सरस्वती चंद्र फिल्म से, और बच्चन ने सरोज जी ने पसंद किया है। तो नाम लेना चाहते हैं अपने दोस्तों का।
1: जी मैम, हम अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं प्रियांश सरोज और ननकुल्ले सरोज, अर्जुन पटेल, नन्हे लाल पटेल और उनकी वाइफ राधिका पटेल।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनिरुद्ध, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार मैम। मोहम्मद
0: जी नमस्कार, जी नमस्कार, बताइए।
1: अयूब चटिया घरारा प्रयागराज से बात कर रहा हूँ।
0: जी अयूब जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: 1987 फिल्म आई थी खुद दर्ज,
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: शत्रुघ्न सिन्हा अमृता सिंह के ऊपर फिल्माया गीत है। राजेश रोशन ने संगीत दिया है, लीवर का गीत है और गाना बहुत अच्छा है। नितिन मुकेश और साधना सरगम ने गाया है।
0: जी
1: यही कहीं जियरा हमारे गोरिया गुम हो गया है।
0: तो आपकी पसंद का ये
1: जी
0: गाना
1: हाँ हाँ गुम
0: बहुत
1: हो गया
0: बढ़िया
1: है आपके प्रोग्राम में,
0: प्रोग्राम में गुम हो
1: आकाशवाणी
0: गया।
1: प्रयागराज के
0: क्या
1: मकान पर
0: बात है,
1: प्रसारित।
0: क्या बात है भाई, अयूब जी का दिल गुम हो गया है इस कार्यक्रम में। तो हम आपकी
1: मित्रगण
0: पसंद को तो पूरा करेंगे, जल्दी से
1: है
0: नाम
1: उनका
0: लीजिए।
1: नाम ले लेकर,
0: जी,
1: हमारे मित्र हैं बड़े भैया, राजबहादुर कनौजिया, राम बाबू कनौजिया, मदन कनौजिया, मोहम्मद अल्ताफ रहमानी।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: बात कर रहे हैं?
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव ग्राम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैं
0: जी प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।
0: हैप्पी न्यू ईयर, कौन सा गीत है इसका?
1: इसका गीत है मनवा लागे और गाने को गाया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। फिल्म में अभिनय किया है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने।
0: क्या बात है, आपने पूरा डिटेल बता दिया गाने का, तो हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रही हूँ, गाँव होती है मोटेरा जिला प्रतापगढ़।
0: जी जी रोशनी जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम तारामणि फिल्म का गाना सुन
0: जी, गाने के बोल बताइए।
1: बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे बोलूं।
0: रोशनी जी ने पसंद किया है दामिनी फिल्म का गीत।
1: जी मैम।
0: अच्छा तो रोशनी जी, नाम लेने हैं आपने किसी के?
1: जी जी बिल्कुल नाम लेने हैं।
0: हाँ बताइए।
1: दहिला मैं प्रतापगढ़ से शांति दीदी है, सुनील दीदी है, आशीष सागर है, आविष सागर है, पूरे बेदुआ से शांति दीदी, प्रीति दीदी है, शेखर दीदी है, और हमारे छोटे भाई बहन है सूरज कुमार है, संदीप कुमार है, मंदीप कुमार है, सुशांत कुमार है, छोटी बहन है पूजा, मम्मी है, पापा है, बड़ी मम्मी है, आप है, सभी सुनने वाले श्रोता मित्र है, और जिनकी कॉल आज नहीं लगी है वो भी है।
0: तो सुनिए दामिनी फिल्म का ये गाना।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर गुलराहा, जिला प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। मैडम
0: जी, प्रभाकर तिवारी जी को कौन सा गीत सुनना है?
1: मैडम जी फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी
0: जी।
1: गीत के बोल है परदेसी परदेसी जाना।
0: तो आपकी पसंद का राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजीलॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल

0: तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
2: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
1: The Jharkhand government today held talks with protesting students and job aspirants over alleged irregularities in examinations conducted by the JPSC and JSSC. The meeting began at the state guest house in Ranchi. An 8-member delegation representing students and job aspirants is holding discussions with government officials. The talks come after protests in the state capital over the past 2 weeks against the alleged irregularities in the exams. The first formal meeting between the government and the students' delegation was held last evening. Payments Council of India (PCI) has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cyber security, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. 7 people were killed and 11 were injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. The accident occurred near Chalwanj Mod at

नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावण के मुकदस महीने में मेरठ के मोदीपुरम में भगवान शिव के जलाभिषेक करने आए कांवड़ी यात्रियों पर फूलों की बारिश के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिव कांवड़ियों पर फूल निछावर किए। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से कहा है कि वह आफात से मुतासिरा और कमजोर इलाकों में नए कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को

0: चंपा, अरे ओ चंपा।
1: हाँ सत्या बहनी,
0: हम कहा बहनी, राम राम।
1: राम राम बहनी। और पनगढ़ कार्यक्रम सुने बैठी सब श्रोता बहनी हरन के राम राम।
0: राम राम। जाना तो चंपा,
1: हाँ सत्य बहनी।
0: आज हम आवत रहे ते घरवा से निकलत बेरी खूब झमाझम बारिश होत रहा। हाँ तो हम छात ओता ले लिया। हाँ? बहनी आधे डगरिया पहुँचा पानी बंद हो गया। मुना करे बाद ऐसा उमस बहनी कि लगता ही नहीं रहा कि अभी क्षण भर पहले बारिश हो के गई है ना।
1: बिल्कुल,
0: मतलब कि देखा प्रभु बारिश तनी बरसा थी तनी जोन मट तनी
1: बारिश देखो बोले सर गर्मी भी खत्म हो जाए थोड़ा सा ठंडी भी एहसास हो लेकिन जैसे बारिश बंद हुई ऐसे
0: हाँ।
1: लागे कि जमीनी में से आग निकल
0: है। बिल्कुल सही कहा, तो कहा थी ना बरसात के बाद उमस कहा कि मतलब ये है कि अभी बारिश का और जरूरत है, धरती अभी अच्छे से
1: जुड़ान नहीं है। बिल्कुल सही कहा तू बहनी।
0: और जानना था चंपा, आज जब हम रास्ते पे आवत रहे ना तो देखा कि वो जो छोटन भैया अपन एक नई दुकनिया डाले हैं ना। हाँ, शुरू अब डाले नहीं हैं बनवाए हैं। वही तीन चार लड़कियां भैया बैठ के मोबाइल ले करके और मोबाइल में जुटा रहन के बगले से आवता जाता, जाता कोनो मतलब नहीं, उन्हें पता ही नहीं,
1: पता नहीं चला था क्यों आवत चाहे उनके घर ही लोग आवत जाते।
0: एकदम से तो हम कहा बतावा आजकल मोबाइल मानी था सुविधा देता है लेकिन लोगन की एकदम बस कहा थी ना जैसे

0: एकदम अपने बसी भूत कैले हैं।
1: बिल्कुल नहीं, ना ही खबर है कि हमरे अगल बगल केहू है के नाई है, उसे बोले बतिया चाहिए फोन ना थोड़ी देर चलावे, केहू आए है तो उसे बोल बतिया ले कुछ को ऐसे जात हैं। और केहू उनके रिश्तेदार सब कहते ना फोन चलाते लड़के बैठ के, उनके रिश्तेदार जाते हैं, घरे वाले जाते हैं, केहू जात है। अब मान लिया कुछ उल्टा सीधा फोन में देखत हैं, घरे वाले देख लिए या सुन लिए तो का करी है,
0: बिल्कुल
1: उन्हें
0: देखा।
1: डरना यही बात का
0: हाँ तो जब अगर चर्चा हम लोग चलाइन दिए ही तो कस न यही पे आज बत कही कैलिन जाए मोबाइल का उपयोग है ना।
1: बिल्कुल सत्या बहनी देखा, आज के जो आधुनिक युग है ना वह में मोबाइल फोन खाली बातचीत के साधन नहीं रहा, इसे जे अच्छे के लिए उपयोग करते हो के लिए तो अच्छा है, मुला जे ओका ओकर दुरुपयोग करते है ओके लिए तो बुरा ही है। लेकिन वो समझ नहीं पावत कि हम एका अगर वो चलाओ देखो फोन होत ना है कि चला कोनो काम है, अब कैले थे ला 10 मिनट फोन देख ली 5 मिनट देख, लेकिन जब चलावे लागे तो चलाओ चलाओ तो 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है
0: पता
1: और
0: नहीं
1: पता नहीं
0: चलते
1: चलत कि
0: समय
1: हम इतना देर,
0: कब।
1: हाँ इतना देर चला लिए। देखो अपन काम भी ऐसा पड़ल रही गए
0: और समय की
1: और
0: बर्बादी
1: समय
0: भी
1: भी
0: हो
1: बर्बाद
0: गई।
1: हो गए।
0: बिल्कुल सही कहती हो। लेकिन एक बात और है चंपा बहनी कि मोबाइल फोन आज हमारे जीवन का ये माने के चाहिए कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गवा बा है ना। एक के माध्यम से हम बातचीत भी करी था, आपन कम समय में आपन बात दूर रहे वाले लोगन तक
1: पहुंचाई
0: पहुंचाए
1: देता
0: सकी
1: है।
0: था है ना। और जो परदेश में भैया हैं बहनी हरे आपन कमाए धमाए रहन वो घर से अपने लगातार जुड़ा रहे।
1: बात
0: हाँ
1: है
0: सवेरे संझा अपन बतियाई कि या कोनो जानकारी भी ले के भाई तो का इंतजार नहीं कर रहे पड़ते, तुरंत फोन मिलाएन पूछ लेन कहाँ कैसे का बाटे है ना।
1: बिल्कुल
0: ओकरे साथ साथ बच्चन के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया बा आजकल ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई बटी बहनी। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर जो भाई बच्चन कर रहा है
1: हाँ तो मैं
0: तो
1: कौनो ने
0: हाँ
1: क्वेश्चन जब प्रश्न उसने कौनो है ना मिलत
0: हाँ
1: है तो मैं ढूंढ
0: ओमन
1: सकत
0: ढूंढ
1: है।
0: लेथिन ऑनलाइन क्लास भी कर लेथिन जैसे जो बटे उनका कम पैसे में अच्छे से कोचिंग वगैरह भी हो जाता है ना।
1: हाँ
0: और मोबाइल का उपयोग जो हम ही बतावत है बहनी जैसे कि बातचीत के लिए ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई के लिए और जैसे कहीं आपके जाए के हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर दीहू है ना।
1: हाँ उस पैसा लेन देन
0: हाँ
1: करे खोई
0: पैसा
1: गए
0: लेन देन करे के हो तो ऐसे तो हर का होता कि समय का बहुत बचत
1: बचत हो
0: होता
1: जात
0: है ना।
1: है।
0: और देखा
1: बिल्कुल
0: जैसे मनोरंजन के लिए भी आप कहीं ऊब रही हो कहीं कुछ हो तो कहीं जो है जाए की जरूरत नहीं वही मनोरंजन। लेकिन
1: बिल्कुल
0: मनोरंजन मनोरंजन की तरह ये नहीं कि ओके आदत में ढाल लें।
1: बिल्कुल और देखा सत्या बहनी एक बात और, जब अरे हर अच्छी चीज़ जोन होते है जैसे फोन करो ना कि अच्छा है सब बातचीत करे के लिए, हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ दिक्कत भी होते है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अगर मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल कर जाए तो नुकसान भी करत है,
0: बिल्कुल
1: कहें कि ज़्यादा मोबाइल चलावे से आंखन पर असर पड़त है और नींद खराब होता है और समय के तो बर्बादी होते हैं। और देखा पढ़ाई और काम जोन होता है उनमें मन नहीं लागत है
0: बिल्कुल
1: जब
0: सही
1: फोन
0: कहती
1: चलावे
0: हो।
1: लागे।
0: हाँ देखा एक बात और है चंपा बहनी है हमारे हाथे में उपयोग भी सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी है
1: हम सब
0: ना।
1: समझी तक हुई कब हम सब करब सदुपयोग होगा कब दुरुपयोग हुई।
0: हाँ तो एके लिए सावधानी
1: बिल्कुल
0: बहुत जरूरी है। देखा हर चीज का लाभ अगर आप ले रहे हैं जैसे पढ़ाई ले का सुविधा लेते हैं हाँ ऑनलाइन कक्षा में मदद लेते हैं अपने परिवार अपने दोस्तन से संपर्क हो जाता आवश्यकता के अनुसार समाचार भी प्राप्त हो जाता फोन
1: बिल्कुल
0: के द्वारा है ना। ऑनलाइन बैंक आपातकालीन सहयोग लेन देन भी हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन एकरे साथ साथ जरूरत से ज्यादा उपयोग करे से दुरुपयोग जो है अस्वस्थता की ओर इंसान जाए लगा था खास तौर पर उनकर आंख। और दूसरी बात एक
1: स्वास्थ्य
0: चीज
1: शारीरिक
0: स्वास्थ्य
1: स्वास्थ्य।
0: गर्दन का बनावट पोस्ट जो का पोस्चर कहथिन देखे होबू एहमन जोन बटे गर्दन में पीछे तरफ जो है आदमी लटका आगे की
1: अगर
0: ओर
1: झुक कर देखा
0: हाँ
1: था तो
0: देखा था
1: गर्दन में तनाव
0: हाँ
1: भी आ
0: जक
1: सकता
0: और
1: है।
0: सर्वाइकल जैसी समस्या उत्पन्न हो जाता है। ओकरे साथ साथ देखा बच्चन में ज्यादा मोबाइल फोन उपयोग करे से चिड़चिड़ाहटपन और
1: अगर
0: याददाश्त भी
1: देखा
0: कमजोर हो
1: देखा
0: जाता
1: जो
0: है।
1: छोटवार गदेल ने अगर फोन चलावत था उनसे मान लिया कहूँ फोन पड़ा ले लेन या फिर चला दे 5 मिनट के 10 मिनट के चला ले, लेकिन वो अगर उनसे मांगो फोन तो उनके अंदर चिचड़ाहट हो जाले
0: बिल्कुल और
1: चिल्लाए
0: आज
1: लागत तभी तो हम
0: बिल्कुल
1: लिए हैं तो काहे मांगे लागे।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और फिर जिद करथिन कि ए नहीं हमारा जन्मदिन आए तो हम गिफ्ट में फोन
1: हाँ
0: लेबे
1: फोन
0: है
1: अगर
0: ना।
1: बड़ा हो जाता लड़के
0: हाँ
1: थोड़े
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: कहीं आप हमारे जन्मदिन पे हमें फोन चाहिए।
0: फोन चाहिए
1: और देखा सत्या बहनी कुछ इसे फोन है ना कहूँ एक सावधानी भी बहुत बरती चाहिए, जैसे हम सब गाड़ी चलावत है कुछ होत है
0: हाँ
1: भैया रहे हैं चलावत हैं
0: हाँ
1: तो फोन आएगी केहू को तो उठा।

0: सत्यवेनी
1: हाँ
0: कजरी कैसन लाग?
1: बहुत निक और ऐसा लगत रहा देखा यही समय में तो कजरी के जो बटे
0: बिल्कुल
1: मने कर।

0: कथा सुने के है ना, काहे से कि देखा गीत गौनाई अपने पनघटे के शान है शोभा है मुना एह
1: देखो
0: बदरी सावन में।
1: बिल्कुल मौसम के हिसाब से गाना सुना था तो मन भी एकदम खुश रहा था।
0: भी बहुत अच्छी लगी मुने। एक बात और है एह मौसम में बहनी, एह मौसम में जैसे बारिश भाई तो खूब बढ़िया जोन बटे मने जोन बटे पकौड़ी उकौड़ी छान के खाए रहा बा, और इतनी समय रुई के पत्ता का जैसा साइडा वगैरह बना खाए रहा बा
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो देखो नाश्ता अपने यहाँ कितनो बनी जाए, मुना खाना बनब जरूरी है।
1: जब तक खाना है तो तक पेट काम बनी।
0: हाँ मुना जब नाश्ता गले तक कह लिए है तो खनवा बन गुआ बा, तू तो बचिन जाए है ना। ओकरे साथ का हो तो बनी ऐ समय में भोजन का बर्बादी हो लगत है।
1: बिल्कुल।
0: और जब घर में रह थीन लोग तो बहनिया रे सोचे थीन का सवेरे संझा खियाई चल ताजा बना देते हैं। मुना हम कहे थे बनावे से पहले ही अगर कम मात्रा में बनावे ताकि
1: नाश्ता
0: भोजन
1: ज्यादा जैसे नाश्ता कर लें तो इस हिसाब से खाना बनावे,
0: चाहे खाने फिर कम बना ले अगर नाश्ता
1: करें तो खाना हिसाब से बनावे, या तो पूछ ले सबसे कि इसे कुछ लोग ये नाश्ता करें तो खाना नहीं खाई है
0: बर्बादी
1: खाना बर्बाद ना हो जैसे।
0: ऐसे हम कहा था बहनी आज कि हर घर में आजकल हम देखी थे कुछ बचे चाहे ना बचे लेकिन चावल रोटी जरूर बच जाता, तो ये सब बड़ा नुकसान होता है। यही से संबंधित
1: एक कहावत भी है ना, उतना ही ले थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में।
0: हाँ देखा कितनी अच्छी बात कहूँ,
1: उतने ले थाली में जो खाए ले
0: हाँ।
1: ना क्यों फेंकाए।
0: बिल्कुल देखे यही से संबंधित आज अपने पनघटे पर एक वार्ता है तो चला सुन लीजिए माँ बहनी वाले सुने। वार्ताकार है नेहा गुप्ता जी।
1: ना करे भोजन की बर्बादी।
0: बर्बादी
2: श्रोताओं कहते हैं ना कि भोजन हमारे लिए भगवान के समान है, अन्न ही देवता है। अगर हम अन्न की पूजा करते हैं अन्न का सम्मान करते हैं तो अन्न हमारे मन का हमारे शरीर का भी सम्मान करती है। पता है आपको चावल के एक छोटे कण से भी पेट भरा जा सकता है। हम सभी को भगवान श्री कृष्ण का वो किस्सा तो याद ही होगा। भोजन के रूप में कुछ भी नहीं था सिवाय एक चावल के छोटे से कण के, बस उसी को पकाया गया और भगवान का उसी से पेट भर गया। कहते कि हम जितनी तन्मयता से जितना आत्मीय पूर्वक भोजन खाते हैं बनाते हैं उसी तरह से भोजन हमें अपना लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि घरों में शादी में पार्टी होती है, बर्थडे होता है, किसी तरह का आयोजन हो, भोजन की बहुत बर्बादी होती है और हम अनावश्यक अपनी प्लेट में इतना अधिक भोजन ले लेते हैं जो कि हमसे खाया तक नहीं जाता। और फिर हम क्या करते हैं, पूरे भोजन को थोड़ा खाया और बाकी के कूड़ेदान में डस्टबिन या फिर जहां प्लेट रखने की व्यवस्था होती है वहीं पर उसे यूं ही छोड़ देते हैं। जरा आप जहां पे सारी प्लेटें रखी जाती हैं वहां पे एक नजर तो डालिए, देख करके दिल बड़ा अजीब सा हो उठता है ना, लगता है कि अरे ये इतने महंगे अनाज का ये हाल। और पता है कई बार आपने रेलवे स्टेशन पर जो कूड़ेदान रखे होते हैं या सड़क के किनारे डस्टबिन रखे होते हैं, कई भूखे लोगों को उसमें से भोजन उठाकर खाते तो देखा ही होगा ना आपने। मन बड़ा द्रवित हो जाता है, लगता है कि अरे हम जो रोटी फेंक देते हैं उसे ही एक इंसान, एक पक्षी, एक जीव जूठे भोजन को जो महक चुका है खाता है। ये हमारी लापरवाही है या ये कहें कि असंवेदनशीलता है तो गलत ना होगा। आखिर हम उतना ही क्यों ना खाएं, उतना ही अपनी थाली में क्यों ना लें, उतना ही क्यों ना बनाएं जितनी हमारी आवश्यकता हो। गांधी जी ने कहा है ना कि ये धरती हर इंसान की जरूरत को पूरा कर सकती है लेकिन लालच को नहीं, बर्बादी को नहीं। तो अब से हम एक प्रण लें उस व्यक्ति के खातिर जो कूड़ेदान से उठाकर भोजन खाते हैं, जो सड़ा हुआ भोजन खाने को बेबस हैं, उन लोगों की खातिर हम अनाज का एक भी दाना बर्बाद नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारे खेतों में तो इतना अनाज होता है क्या दिक्कत है। अरे इतना नहीं सोचना चाहिए, या कई बार जब बच्चे घरों में भोजन उनको परोसा जाता है तो बेतरतीब तरीके से खाते हैं। आपने देखा होगा कि गांव घरों में बच्चे जब खाते हैं तो पूरा फैला देते हैं, या फिर थोड़ा खाया पूरा छोड़ दिया और

0: उसको यूं ही घर के जो लोग होते हैं नाली में बहा देते हैं या यूं ही आसपास डाल देते हैं। उससे बदबू भी होती है, मक्खी मच्छर न जाने कितने छोटे छोटे जीव पनपने लगते हैं और वो हमारी ही सेहत को कहते हैं ना कि प्रतिकूल असर डालते हैं उस पर। तो इतना करें कि हमारे पास जो अन्न है उसका हम सम्मान करेंगे। और कहते हैं ना कि अगर हम अन्न को बड़े मन से खाते हैं, उसको अपनी हाथों में लेते हैं, यकीन मानिए अन्न का एक छोटे अन्न के एक छोटे से हिस्से से ही हमारा पेट भर जाता है और पेट के साथ साथ मन भरता है और मन के साथ आत्मा तृप्त हो जाती है। कहते हैं कि जिस घर में अन्न की पूजा होती है, अन्न का मान होता है, उस घर में समृद्धि हमेशा सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। क्योंकि पता है अन्नपूर्णा जो माता होती हैं वो खुश रहती हैं और जब वो खुश होती हैं तो सभी के चेहरे खिले होते हैं। फिर चेहरे पर अनावश्यक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होती बल्कि ये प्राकृतिक खुशी होती है और लोग मन लगा करके काम करते हैं और अपने क्षेत्र में तरक्की करते हैं। तो चलिए आज से हम प्रण लेते हैं न किसी आयोजन में शादी विवाह बर्थडे पार्टी या फिर अपने घर में किसी को भी अन्न की बर्बादी नहीं होने देंगे और हर भूखे का पेट भरने की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हाँ हम अपने घर से एक रोटी भी किसी जीव को किसी भूखे को अच्छी तरह से देते हैं तो वो हमें लाख दुआएं देता है और इन दुआओं के सहारे जिंदगी बड़ी खुशी खुशी कट जाती है। तो बस यूं ही खुश रहते हैं।
1: चंपा
2: हाँ सत्य बहनी,
1: देखा नेहा कितनी, नेहा बहनी जौन बटा कितनी नीक नीक बात बताएं
2: बिल्कुल।
1: कि वाकई में हम शांत होके सुनत रहे फिर हम सोचे लगे कि एक एक दाने का कितनी कीमत होता है।
2: बिल्कुल,
1: वो एक दाना उगावे के लिए एक किसान कितनी मेहनत कड़ी धूप कड़ी ठंडक वर्षा मतलब हर मौसम की थपेड़ सहत भय अनाज उपज होता। और अगर हम ही लोग अनाज की बर्बादी करवाए तो हमारे छोटे बच्चे अन्नपूर्णा का सम्मान कर कहाँ से सीखे हैं, है ना। ऐसे जरूरी है कि हम लोगन के अनाज के जोन बटे बनावे के समय बहुत ही सीमित कम पड़ जाए बहनी दोबारा बन जाए
2: बिल्कुल,
1: लेकिन ज्यादा हो जाता है तो वो बर्बाद होता है ना।
2: सही कहते बहनी,
1: ऐसे अन्न का बर्बादी ना करें और कोशिश करें कि जोन बटे कम से कम बनावे ताकि बर्बाद ना हो।
2: बिल्कुल,
1: तब फिर देखा ई तो रही आज की वार्ता बहनी, ई के बाद कसना एक नीक नीक और गीत सुन लिया जाए हेम श्रीवास्तव से।
2: चलो सुन लिया जाए।

0: चंपा
1: हाँ सत्यवानी
0: देखा, वाकई में मेहंदी लग जाए अगर, अब देखा जैसे कि धीरे से सावन में ही तो मेहंदी का सबसे ज्यादा वो होता, सब
1: बिल्कुल
0: बहनी हर इकट्ठा होथिन झुंड के झुंड, जोन बाटे
1: मेहंदी लगावत एक
0: मेहंदी
1: दूसरे के लगावत
0: हाँ
1: है,
0: लगावत ना अच्छे अच्छे डिजाइन से, तो वाकई मन एकदम
1: और हरी हरी
0: हो जाता
1: साड़ी,
0: है।
1: हरी हरी चूड़ी, हर चीज हरा
0: हरी
1: हरा
0: हरी मेहंदी
1: हरी हरी मेहंदी।
0: तो देखा सही बात है। मुने एक बात कहब चंपा बहनी, कि देखा इतने दिना बाद हमसे मिलू है ना, तो का सोचे रहू ना कि रसोई घर से आज बहनी खातिर का लेके चले के है।
1: बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हम आई रसोई घर से कुछ लाई ना,
0: हाँ तो बताओ फिर आज का ले आए हो बहनी।
1: आज हम ला है रसोई घर से सब्जियों का सूप।
0: अरे वाह, तो ये बताओ सब्जियों का सूप तो ले आए हो, मुने के बनाऊ कैसे बहनी।
1: अच्छा तो हम बताए दी, देखो सामग्री पहले हम बताए दी। देखो गाजर ले लें एक, जैसे तीन दो तीन लोग के लिए बनावे खोए तो उके लिए हम बताओ थे। गाजर ले लें एक, पत्ता गोभी ले लें आधा कप बारीक
0: अच्छा
1: कटी हुई,
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ शिमला मिर्च ले लें एक चौथाई कप बारीक कटी हुई, बीन्स ले लें एक चौथाई कप वो बारीक कटा हुआ, और मटर ले लें एक चौथाई कप, और लहसुन कली ले लें दो तीन कली ले लें ये बारीक काट लें, अदरक का एक छोटा टुकड़ा ले लें एक कद्दूकस कर लें, और तेल ले मक्खन ले लें जो पसंद हुए एक बड़ा चम्मच, और तीन तीन चार कप पानी ले लें, और नमक ले लें स्वाद के अनुसार, और काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच,

0: और कॉर्नफ्लोर जो नावत है वो कर लें एक छोटा चम्मच गाढ़ा करे करती, और हरी धनिया बारीक काट लें सजावे के लिए, जब सूप पी है तो सजावे करती। और देखा बनाओ विधि बताई दी,
1: बताओ।
0: देखो एक पतीला ले लें, उसमें तेल या मक्खन जो डाले को कर डाल के गरम कर लें।
1: अच्छा।
0: अब यहाँ अदरक और लहसुन डाल के थोड़ी देर तक चलाओ, जब सुनहरा हो जाए थोड़े, तो मैं अब गाजर बीन्स पत्ता गोभी शिमला मिर्च और मटर डाल के,
1: हाँ यानी जो कटी हुई हाँ सब्जी
0: जितना सब्जी कटी हुई सब डाल के 2-3 मिनट तक हल्का भून लें।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब वो सब्जी जब भुना जाए तो मैं पानी डाल के नमक डाल के उसका मिलाई दें अच्छे से। ओके बाद अब ढक्कन से उसका ढक दें 10-15 मिनट तक, एकदम ना आज तेज रहे ना एकदम धीमा रहे, ओका रख दें 10-15 मिनट तक। वो बढ़िया से पक जाए, जब कुल सब्जी जब नरम हो जाए बढ़िया से, तो सब्जी पके के बाद उम्मीद जो आ उल्हे हैं कॉर्नफ्लोर है ना, तो 2 चम्मच पानी ले के बड़ा चम्मच से मक्का लाल जो नावत हाँ तो का घोल लें उम्हें पानी में।
1: अच्छा।
0: घोले के बाद होगा उम्हें डाल दें सूप में 2 मिनट तक, होगा ढक के फिर से पका लें और गैस बंद कर दें। अब लास्ट में जो ना अंत में हमें काली मिर्च डाल के उसका जो पाउडर है अच्छी तरह से मिलाए दें, और गर्मा गर्म सूप हरी धनिया डाल के सजाई के पिए।
1: वाह भाई वाह।
0: और देखिए बरसात में पिए कितना मजा आई।
1: बिल्कुल आनंद तो आई बहनी। और एक बात और है
0: हाँ?
1: कि देखा रोज रोज तो हर चीज रहता, कुछ चीज हट के अगर अलग आप करत हो तो ज्यादा अच्छा रहता।
0: बिल्कुल।
1: और बरसात में जैसे कि आजकल जो बटे समय भी थोड़ा बाहर नहीं आदमी जाते तो घर में रहे, पर समय भी थोड़ा मिल जाता तो अच्छे से कर लेता। और रोज रोज की चीज से अगर हट हट के कुछ चीज बनाओ
0: हाँ,
1: तो
0: थोड़ा अलग अलग तरह
1: स्वाद
0: तो
1: रहता है,
0: खाऊं बढ़िया लागत है और मन भी नहीं।
1: हाँ। और जैसे कि घर में कभी कदा का होता कि सब्जी खत्म होने लगा था लेकिन थोड़ी
0: थोड़ी
1: थोड़ी सब्जियां
0: सब्जी
1: कई
0: हाँ,
1: बची रहती
0: जैसे
1: ना।
0: एक टू गाजर बचा
1: हाँ,
0: शिमला मिर्च बचा एक टू थोड़ा थोड़ा सब्जी है
1: तो ओकर उपयोग भी बड़े अच्छे से हो जाता है। और देखो बच्चन भी पसंद करत थे,
0: बिल्कुल।
1: तो यह तरीके से तो बताओ बहनी मन एकदम अच्छा से हो गया कि अब हम घरे चल के बनाई। तो
0: बिल्कुल।
1: यही बात पे हम तो है इतनी नीक नीक रिश्ते नाते फिल्म से गीत सुनाओ थे, तू सुना मार बहनी वाले सुनाई
0: चला सुन लिया जाए।

0: हाँ सत्या बेनी देखो
1: देखा,
0: गौनी कितनी नीक रही।
1: गौनाई नीक रही, और जब तक वो कन खन कन खनकावत रही कंगना, तब तक हम
0: हाँ
1: अपन कंगने घुमाए घुमाए देखत रहे बहनी
0: हमहू
1: कि
0: देखत रहे तो कहीं घुमावत थी हम नहीं समझ पावत
1: हमहू
0: रहे
1: घुमाए घुमाए देखत रहे बदले की जरूरत आएगी बाकी नहीं
0: बिल्कुल
1: देखा अपने पनघटे पर हम लोग आई था है ना, इतनी अच्छी तरह से हर बहनी हरेन से बात करे के करी था कि हमें लगा था कि बहनी हरेन के पसंद तो जरूर ही आवत हो, काहे कि
0: बिल्कुल
1: केहू के मेहनत बेकार नहीं जाते है ना।
0: बिल्कुल सही कहा थी बनी।
1: और देखा इतनी समय एक बात और है चंपा बहनी ध्यान देवे के, एक बच्चन के, बच्चन बरसात में खूब खुशी खुशी मन से
0: अगर
1: भीगे
0: जहां
1: खिन
0: देखो पानी भर लो हम छप्प से कूदिए
1: छप्प से कूदी हैं, और अगर दिन में 2 बार बारिश भाई तो 2 बार, यही चक्कर
0: नहाइए
1: में
0: में
1: बच्चन
0: जाए
1: के
0: के
1: हो जाता तबीयत खराब। और
0: बिल्कुल
1: देखा सर्दी जुखाम और बुखार का इतनी समय समय चल रहा बा, तो बच्चन के सावधानी के साथ रखें तो ज़्यादा अच्छा है ना।
0: बिल्कुल
1: और
0: सही कहा
1: ओकरे
0: तुमने।
1: साथ साथ बहनी अरन की ये एक जरूरी संदेश जरूर सुनवाई दिन जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमार ईमेल एड्रेस है
5: pangatprogram@therateofgmail.com, स्पेलिंग है PANGATPROGRAMME@gmail.com, pangatprogram@therateofgmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2550। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
6: बेसब्री से इंतजार रही।

0: चंपा देखा
1: बोली।
0: बहनी, अरे बताई ना कि कौने कौने तरीके से आपन मन के बात हम लोगन तक
2: भेज सकल बहनी हरे,
0: है ना। तो देखा बहनी हरे, जैसे जैसे बताई वैसे वैसे बहनी हरे करें तो ज्यादा अच्छा रहे, है ना।
2: बिल्कुल सही कहा तू। और सत्य बहनी देखा, आजकल बारिश का मौसम है तो जगह जगह अपने घर के आसपास पानी जम जाता है, तो एक काम करे कोई गड्ढा उड्ढा जो मतलब मिट्टी डाल के उसका पानी ना जमा हो पावे, जैसे क्या होता है छोटा छोटा जैसे हो जाता है मच्छर, और इसमें जो मच्छर काटत है वो देखा तुरंत दीदोरा जैसे निकल जाता, पूरा लाल हो जाता है
0: एकदम, एकदम खूब फूल आवत है।
2: खुजली भी बहुत होता है, खुजला तो एकदम फूल आता है।
0: सही कहती हूँ। और देखा इतने समय साफ सफाई रखब भी जरूरी का है कि बरसात में आस पास जो बिल बिलौका रहा थी उनमें पानी भर जाता है,
2: तो कीड़ा मकोड़ा सब
0: घर की ओर भागा थी, है ना। ऐसे आस पास साफ सफाई रखे ज्यादा अच्छा बाटे। और जोन बाटे हम तो कही था कि बहनी हरे अपने बच्चन के भी समझावा कि साफ साफ रास्ते चले, जहाँ झाड़ काट रहे ओ कहती बोल ना रखे ना जाए, है ना। काहे कि लड़कों जब सड़कों पर आवे लगा थी महीनी स्कूलिया से तो सीधे डगरा नहीं चलते, है ना।
2: और देखा सत्या बनी घड़ी सारा करत है और घरे चले के बेरा होते है,
0: तो राम राम
2: किया जाए। राम राम बहनी।

0: Indian shuttler Ashmita Shaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSE examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under 20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का।

0: लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
4: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया।

0: 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हेनरिक हेंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं राकेश कुमार और साथी। पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

अभी आप राकेश कुमार और साथियों के गाए लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 17.3 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं धरती के गीत। आज कलाकार हैं राजवंत सिंह पटेल और साथी। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में कहरवा।

धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कहरवा, कलाकार राजवंत सिंह पटेल और साथी। आइए अब सुनते हैं इनके स्वर में झूमर।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं धरती के गीत कार्यक्रम। आज कलाकार हैं राजवंत सिंह पटेल और साथी। अभी आप सुन रहे थे इनके स्वर में झूमर। आइए अंत में सुनते हैं पूर्वी।

अभी आप सुन रहे थे धरती के गीत। कलाकार थे राजवंत सिंह पटेल और साथी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे युवावाणी।

0: किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं योर फेवरेट प्रोग्राम युव वाणी, जहां विचार बनते हैं प्रेरणा और प्रेरणा बनती है परिवर्तन की शुरुआत। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त यानी अभिषेक।
1: और दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आज हम आपको इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय में ले चलेंगे जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश को एक ही स्वर में पुकारने पर मजबूर कर दिया,
0: अंग्रेजों भारत छोड़ो। साथियों, 9 अगस्त का दिन केवल एक तारीख नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों के अदम्य साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की तीव्र आकांक्षा का प्रतीक है। आइए जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी और उससे मिलने वाली प्रेरणा।
1: साल था 1942, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार भारत के जो लोग थे उनको युद्ध में झोंक रही थी, लेकिन भारतीयों से कोई राय नहीं ले जा रही थी। जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था और स्वतंत्रता की मांग पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी।
0: इसी पृष्ठभूमि में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक, जिसे आज अगस्त क्रांति के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, वहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ऐतिहासिक बैठक हुई। वहीं महात्मा गांधी ने देशवासियों को अमर मंत्र दिया, करो या मरो, यानी डू और डाई। उनका संदेश स्पष्ट था, अब स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा।
1: हाँ, 9 अगस्त की सुबह होते होते महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद सहित लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अंग्रेज ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई, अब आंदोलन किसी एक नेता का तो नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता का ये आंदोलन बन चुका है। गांव गांव, शहर शहर लोग सड़कों पर उतर आए। विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों और युवाओं ने आंदोलन की कमान संभाली। कई स्थानों पर समानांतर सरकारें भी स्थापित की गईं। अंग्रेजी शासन ने कठोर दमन किया, लेकिन भाई भारतीयों का जो हौसला है ना अभिषेक,
0: बिल्कुल टूटा नहीं। और साथियों, ये आंदोलन भले ही तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिला सका था, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार को ये एहसास करा दिया कि भारत पर अब अधिक समय तक शासन करना संभव नहीं होगा। यही आंदोलन 1947 की आज़ादी का मजबूत आधार बना।
1: हाँ, और आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन वीर सेनानियों के सपनों का सम्मान करें। देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ना नहीं होता है, बल्कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, समाज में सद्भाव बनाए रखिए और राष्ट्र निर्माण में चाहे थोड़ा सा ही सही पर अपना योगदान देते रहिए।
0: बिल्कुल। और श्रोता साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन हमें ये भी सिखाता है कि

0: जब उद्देश्य महान हो और संकल्प अटूट हो तो सुधांशु बड़ी से बड़ी जो चुनौतियां हैं ना वो भी हमारे सामने अपने घुटने टेक देती हैं, है ना।
1: बिल्कुल सही बात
0: और साथियों
1: है।
0: जब हम बात आज़ादी की कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक और कहानी, और ऐसी एक नहीं सुधांशु कह रहे तमाम कहानियां हमारे देश में चल रही थी उस दौर में, जो क्रांति की ज्योति जल रही थी, तो ऐसी कई ज्वालाएं देखने को मिलती हैं चाहे, और ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी तब तक अधूरी रहती है जब तक देश का हर कोना संभव ना हो, और शायद हर देश के हर कोने को आज़ाद कराने के लिए ऐसी क्रांतियां देश के अलग अलग कोने में चल रही थी। यानी हम बात कर रहे हैं साथियों गोवा क्रांति की।
1: साथियों 15 अगस्त वर्ष 1947 को भारत हमारा स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन अब हम बात करें अगर गोवा की, दमन और दीव की, तो लगभग 14 वर्षों तक पुर्तगालियों के शासन के अधीन ही रहा था। 18 जून का समय था, वर्ष था 1946, जिसमें समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में जन आंदोलन का बिगुल फूका। यही दिन आगे चलकर, जैसा कि अभिषेक ने भी आपको बताया, कि गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
0: हाँ, और इस आंदोलन में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने सत्याग्रह किया, जेल गए और अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी। अंततः दिसंबर 1961 में भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के सफल अभियान के बाद गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए और भारत का अभिन्न हिस्सा बन गए।
1: दोस्तों, गोवा क्रांति दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, बल्कि उन असंख्य बलिदानों की अमूल्य विरासत है जिसे हम एकता, राष्ट्र प्रेम और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाते हैं।

0: तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर प्रेरणा पुंज में। और आज हम प्रेरणा पुंज में बात करेंगे, पर हम नाम बाद में बताएंगे आपको। पहले ये पंक्ति सुनिए। नफरत और अफवाहें हवा में तैरती हुई उन चिंगारियों की तरह हैं जो किसी भी हंसते खेलते घर को पल भर में राख कर सकती हैं।
1: दोस्तों युवाड़ी की इस खास सफ़र में अब समय हो चुका है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अपने प्रेरणा पुंज सेगमेंट का। और आज की इस प्रेरणा पुंज में हम हिंदी साहित्य और भारतीय समाज के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की बात कर रहे हैं जिनकी कलम ने विभाजन की त्रास दी और आम आदमी के संघर्षों को बहुत गहराई से महसूस किया और लिखा भी। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात लेखक, नाटककार और चिंतक भीष्म साहनी जी की।
0: बिल्कुल, 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में जन्मे भीष्म साहनी जी का पूरा जीवन साहित्य, कला और सामाजिक चेतना को ही समर्पित रहा है। वे मशहूर अभिनेता बलराज साहनी जी के छोटे भैया थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान अपने विचारों या यूं कह लीजिए कि अपने ही दम पे बनाई।
1: भीष्म साहनी जी ने लाहौर से अंग्रेजी में एमए किया और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की। 1947 में देश के विभाजन का जो दर्द और भयानक मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसने उनके संवेदनशील मन पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। विभाजन के बाद वो भारत आए और दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में स्टडी करने लगे।
0: और इतना ही नहीं अभिषेक, 1957 से 1963 तक वे मॉस्को यानी कि रूस में रहे, जहां उन्होंने विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में काम किया। वहां उन्होंने रूसी भाषा की कई कालजयी कृतियां प्रकाशित भी करवाई थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, भीष्म साहनी जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल, और उनके योगदान की बात करें तो और भी, चाहे फिल्मों के क्षेत्र में हो, पटकथा के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया। और साथियों, भीष्म जी के लेखन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें कोई बनावटीपन या कह लें कि दिखावा नहीं था। उनका उपन्यास तमस हिंदी साहित्य का एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ जो 1947 के

0: विभाजन की पृष्ठभूमि पर ही लिखा गया था। और सबसे प्रामाणिक दर्दनाक दस्तावेज आज के समय में जिसे माना जाता है, इस उपन्यास पर जब गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन के लिए धारावाहिक सीरियल यानी सीरियल्स बनाए तो उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
1: सही कहा तुमने, तमस के लिए उन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तमस के अलावा उनके उपन्यास बसंतो, मैयादास की माड़ी, कुंतो और उनके लिखे नाटक जैसे कि हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में और माधवी आज भी रंगमंच पर बहुत ही चाव से खेले जाते हैं।
0: साथियों, भीष्म साहनी जी केवल एक लेखक नहीं थे, वो प्रगतिशील लेखक संघ यानी PWA और इप्टा से जुड़े हुए एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। वो मानते थे कि साहित्य का असली काम समाज में करुणा, सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव जगाना है।
1: बिल्कुल, उनकी इसी अप्रतिम सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्म भूषण और वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से नवाजा था। 11 अप्रैल 2003 को वो इस दुनिया से भले ही विदा हो गए, लेकिन अपनी रचनाओं के जरिए वे आज भी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज बने हुए हैं।
0: सुधांशु, उम्मीद है कि भीष्म साहनी जी का जो जीवन था हमारे श्रोता साथियों को काफी प्रेरित किया होगा और उसने उस जीवन से काफी कुछ उन्हें सीखने को मिला होगा।
1: हाँ।
0: अब इसी के साथ अपने श्रोता साथियों को क्यों ना सुनवाते चलें एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के खास सेगमेंट में अभिषेक, और आज का हमारा जो खास सेगमेंट है वो है आज की शाम आपके नाम।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, कहते हैं ना कि जो आंखों से बोलता था वो खामोश हो गया, एक शख्स पूरी कायनात को खामोश कर गया। किरदार तो बहुत निभाए उसने पर्दों पर जाते जाते हर दिल को नम कर गया। युवाणी के इस बेहद खास और आत्मीय सेगमेंट में आप सभी का फिर से स्वागत है, और आइए महसूस करिए आज की शाम आपके नाम को,
1: और साथ ही आपकी रेडियो सेट की उस पार से ढेर सारे जज्बात और एक गहरी सांस के साथ। साथियों, कुछ लोग सिनेमा में सिर्फ अभिनय करने नहीं आते, बल्कि वो जिंदगी को उसकी तमाम सच्चाइयों के साथ पर्दे पर जीने आते हैं। एक ऐसा सितारा जिसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड के क्षितिज पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में पूरी दास्तां तैरती थी।
0: बिल्कुल, आज की ये शाम समर्पित है हिंदी सिनेमा के उस महान, बेबाक और यूं कहिए कि जादुई अदाकार के नाम अमर कलाकार इरफान खान जी को। आज हम उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष, उनके यादगार किरदारों और उनके उस खामोश अदाकारी का जश्न मनाएंगे जो आज भी हमारे दिलों में सांस लेती है।
1: तो अपने अपने कप में चाय डाल लीजिए और रेडियो की आवाज़ थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज की ये शाम सिर्फ और सिर्फ इरफान भाई के नाम।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज की शाम और आपके नाम पर इरफान खान साहब की जिंदगी और उनकी फिल्मी सफर के बारे में।
4: जयपुर के पास स्थित टोक के एक बेहद साधारण परिवार में 7 जनवरी 1967 को जन्मा वो लड़का जिसे बचपन में क्रिकेट का जुनून था। किसे पता था कि जो हाथ कभी गेंद और बल्ला थामते थे वो एक दिन भारतीय सिनेमा की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे।
3: नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NST में जब उनका दाखिला हुआ तो उनके पास साथियों फ़ी भरने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके भीतर जुनून का एक ऐसा समंदर हिलोरे ले रहा था जिसने गरीबी की दीवारें जिसे रोक नहीं सकती थी, कोई भी चट्टान उनको अपने हौसलों के आगे झुकने नहीं दे सकती थी। और शुरुआत में उन्होंने TV सीरियल्स में सुधांशु छोटे छोटे रोल निभाए थे, जैसे भारत एक खोज, चाणक, चंद्रकांता जैसे सीरियल्स थे जिनसे उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की थी, लेकिन उनका हुनर एक बड़े आसमां की तलाश में था।
4: उनके इस शुरुआती संघर्ष और अथक जज्बे को समर्पित ये पंक्तियाँ हैं कि किस्मत की लकीरों से लड़कर जो अपना रास्ता बनाते हैं

0: इतिहास के पन्नों पर दस्तखत वही कर जाते हैं। राह में पत्थर तो बहुत आए उनकी, मगर वो पत्थरों को तराश कर अपनी पहचान बनाते हैं।
1: बिल्कुल। और साथियों, गांधी और संघर्ष के उन दिनों से आगे बढ़ते हुए साल आता है 2003 और 4 का, जिसमें सिनेमा के इतिहास का ये वो दौर था, वो मोड़ था, जब इरफान खान ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म हासिल में रणविजय सिंह का किरदार जहां विलन भी हीरो से ज़्यादा ताकतवर और करिश्माई लगने लगा।
0: और फिर आई विशाल भारद्वाज की मकबूल। शेक्सपियर के मैकबेथ को मुंबई के अंडरवर्ल्ड में ढालना आसान तो नहीं था, लेकिन इरफान ने अपनी आंखों के इशारों से वो जादू रचा कि पूरी दुनिया दंग रह गई। तब्बू के साथ उनकी केमिस्ट्री और आंखों ही आंखों में संवाद, उफ क्या मज़ा था वो।
1: और इरफान साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्हें लंबे चौड़े डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनकी आंखें जब बोलती थीं तो बड़े बड़े पटकथा लेखक अपनी कलम रोक लेते थे। किसी शायर ने उनके इस अंदाज पर क्या खूब लिखा है, लफ्ज़ों की ज़रूरत किसे है जब आँखें बोलती हैं, वो खामोशी में भी दिल के राज खोलती हैं। किरदार तो बहुत देखे हैं पर्दे पर हमने, पर उनकी अदाकारी रूह को झंकार कर देती है।

0: दोस्तों, गाने के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अभिषेक, जब 2012 में पान सिंह तोमर आई ना, तो हर किसी की जबान पर एक ही संवाद था। वो संवाद उनको रट गया था। एक एथलीट से बागी बने पान सिंह तोमर के किरदार को इरफान ने जिस शिद्दत से जिया ना, उसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को उनको मिला।
1: और इतना नहीं साथियों, सिर्फ देश ही नहीं, द नेम सेक, लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलेनियर, जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी हॉलीवुड फिल्मों के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया। जब द लंच बॉक्स में साजन फर्नांडिस बनकर उन्होंने एक चिट्ठी पढ़ी, तो लगा जैसे हर अकेले इंसान को उनका हम सफ़र मिल गया हो।
0: इरफान ने साबित किया कि भाषा और सरहदें कला के आगे छोटी पड़ जाती हैं।
1: दोस्तों, इरफान सिर्फ गंभीर किरदारों के बादशाह नहीं थे। जब वो अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ राणा का किरदार निभाए, या बात करें हिंदी मीडियम की, तो उसमें जो उन्होंने राज बत्रा का किरदार निभाया, उससे उन्होंने समाज के दोहरे रवैये पर हंसते हंसते एक ऐसा तमाचा मारा जो सीधे दिल पर लगता है।
0: बिल्कुल अभिषेक, पीको में जब ये कहते हैं ना कि इमोशन का मोशन से सीधा संबंध है, तो हंसी भी आती है और उनकी सहजता पर प्यार भी आता है। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर हैं जहाँ सब शब्द छोटे पड़ जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। साल 2018 में जब ये खबर आई कि इरफान भाई एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं, तो पूरा देश उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगने लगा।
1: और फिर वो काली तारीख आई, 29 अप्रैल 2020, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी, तब भारतीय सिनेमा का ये जाबांज सिपाही हमें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। 53 साल की उम्र में वो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी अनगिनत यादें।
0: इरफान भाई की विदाई पर किसी शायर ने ये कलाम सीधा दिल को चीरता फाड़ता हमारे सामने आता है, और उन्होंने कहा है कि अलविदा कह गए तुम, मगर यादों का कारवां छोड़ गए, आँखों में नमी और सीने में एक तूफान छोड़ गए, जो ना भर सकेगा कभी सिनेमा का वो खालीपन छोड़ गए, तुम तो चले गए इरफान, पर हर दिल में अपनी जान छोड़ गए।

Turn up the volume.

0: तो दोस्तों, हम जैसे कि आपको पता है कि हम अपने कार्यक्रम में प्रश्नावली का भी सेगमेंट लेके आते हैं, तो हमारा जो कल का प्रश्न था अभिषेक, वो ये था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। इसका उत्तर है सरस्वती पत्रिका।
1: और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे आज के प्रश्न की। प्रसिद्ध हिंदी लेखक भीष्म साहनी जी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन था? दोस्तों, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा, और इसी के साथ मुझे अभिषेक को
0: और मुझे यानी कि सुधांशु पांडे को
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजकर

पाँच मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में, संस्कृत भारती रात 9:30 बजे और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा और शाम 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होंगे। पंचायत घर में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई राकेश कुमार यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत के अलावा परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत सुनेंगे अजीत चौरसिया से आशुतोष सुंदरम की बातचीत। विषय होगा बरसात के प्रमुख संक्रामक रोग और बचाव। साथ ही एक और बातचीत होगी डॉक्टर अजय कुमार से चंद्रजीत यादव की, बदलते मौसम में प्राकृतिक खेती। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा। इसमें आपको सुनवाएंगे डॉक्टर नीरज की वार्ता, स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। सुगम संगीत रात 7:45 बजे, कलाकार होंगी श्रुति चौहान। रात्रि 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां आप सुन सकते हैं रात 9:30 बजे। प्रातः 6:35 पर कृषि जगत में किसान भाई दुर्गेश कुमार मिश्र से की गई बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा फूलों की खेती में जैब्रोलिक अम्ल का महत्व। प्रातः 6:45 पर रोज की तरह स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा। इसमें हम लेकर आएंगे डॉक्टर शरद सांगुलू की वार्ता, एलर्जी का होम्योपैथी उपचार। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुन सकते हैं सवेरे 7 बजे। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे पंडित उल्लास पापट का संतूर वादन और दिन में 12:15 पर पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन। सुगम संगीत सवेरे 9:50 पर और रात 7:45 बजे कलाकार होंगी चित्रा चौरसिया। लोकगीतों के कार्यक्रम में सवेरे 10:05 पर कलाकार होंगे विकास चंद्र पांडे, सूर्य प्रकाश पटेल, चंद्र प्रकाश पाठक और साथी। 2:30 पर रंजीत कुमार और साथी। शाम 6:30 बजे पंचायत घर में भी आप रंजीत कुमार और साथियों के स्वर में लोकगीत सुन सकते हैं। पंचायत घर में लोकगीतों के अलावा ग्रामीण भाई मनोज कुमार सिंह से बातचीत सुनेंगे। खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु आवश्यक उपाय। सवेरे 11:15 पर बाल संघ कार्यक्रम होगा और शाम 5 बजे ग्रामीण बच्चे सुनेंगे बाल गोपाल। रात 8 बजे आप सुनेंगे अपने पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है। साप्ताहिक कार्यक्रम आज इतवार है रात्रि 8:30 पर। इसमें हम आपको सुनवाएंगे राजेंद्र कुमार की लिखी झलकी LTC के का चक्कर। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आप सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। केवला देवी, उम्र 32 वर्ष, कद 5'3", शरीर की बनावट सामान्य, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। ये दिनांक 25

जून 2026 से अपने निवास स्थान ग्राम बजीरपुर थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना कुंडा जनपद प्रयागराज को सूचित करें। यह सूचना है थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से। ईश्वर सिंह सूचित करते हैं, उनके पुत्र अमित सिंह, उम्र 19 वर्ष, कद 4 फुट 6 इंच, रंग सांवला, शरीर की बनावट औसत है, इनकी दाई आंख आधी खुली हुई है और ये मंदबुद्धि हैं। इनके ये दिनांक 24 अप्रैल 2026 से अपने निवास स्थान पूरे लोक थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने काले रंग की जैकेट और लोअर पहना हुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को सूचित करें। संबंधित फ़ोन नंबर कृपया नोट कर लें, 9919298863। फ़ोन नंबर पुनः सुन लें, 9919298863। ये सूचना है थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ से। संदीप कुमार सोनकर पुत्र जवाहर सूचित करते हैं कि पन्नेलाल सोनकर, उम्र 45 वर्ष, ऊंचाई 4 फीट 30 इंच, बदन इकहरा, चेहरा सामान्य और रंग गेहुआ है। इनकी विशेष बात यह है कि इनके दाहिने हाथ में उंगली में कटे का निशान है। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये दिनांक 14 मई 2026 से सवेरे लगभग 5 बजे से अपने निवास स्थान चौका पारपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने काला लोअर और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना मानिकपुर जनपद प्रयागराज को सूचित करें। माफ कीजिएगा, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को सूचित करें। संबंधित मोबाइल नंबर नोट कर लें, 7233049550। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान।

0: अभी आप समूह स्वर में देश गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् सेमीकंडक्टर्स अंतरिक्ष ड्रोन्स इत्यादिषु उदयोन्मुख क्षेत्रेषु स्वावलम्बनं विकसित भारतस्य सुदृढाधारस्य रूपेण कार्यं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा IIT छात्राः स्वनिर्णयस्य केन्द्रस्थाने राष्ट्रियहितं स्थापयितुं प्रार्थितः। झारखण्ड सर्वकारः JPSC तथा JSSC परीक्षासु अभिकथितानां अनियमिततानां विषये छात्रैः सह द्वितीयचरणस्य वार्तालापम् अकरोत्। हिमाचल प्रदेशस्य चंबामण्डले अद्य प्रातः बस दुर्घटनायां 7 जनाः मृताः।

हम कई किसान भाई देखा हो भाई, धान के तलग वही हो गई बाटे। और साथे साथे भाई अब समय धाने के भाई निर्वही और हुकर भाई देखा खर पतवार के भाई नियंत्रण के काम चलत बाटे। साथे साथे एक बात यह कह कि भाई देखा थोड़ा बहुत भाई जो उर्वरक डाले के भी काम बा किसान भाई का करत हैं। तो हम तो कहा भैया कि देखा जब उर्वरक आप भाई अपने फसल में डालत हैं और अच्छी फसल के लिए, तो भाई हमारे एक सावधानी ये बरतें कि भाई देखा जौन भी ओकर संसूत मात्रा बा वही के प्रयोग करें। तो भाई ऐसे आपके उत्पादन जौन है बढ़िया होए और जौन देखा लागत बाटे वो भी सार्थक होए। साथ साथ देखा एक बात और है, हम कहीं देखा आज बड़ा खास दिन बाटे तो देखा अगस्त का महीना आवत है। तो भाई देखा और आज 8 अगस्त भी बाटे, अ बहुत महत्वपूर्ण यह दिन बाटे कि भाई आज के दिन भाई जौन है अपन देश जब अंग्रेजों के भाई जब गुलाम रहा तो उसे आज़ादी के लिए देखा बराबर संघर्ष करता रहा जौन है। तो यह तारीख के भाई देखा मुंबई में भाई ग्वालिया टैंक मैदान में जौन है भाई कांग्रेस के द्वारा भाई एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। और यह अवसर भाई जौन भाई अपन गांधी जी हाँ वो ये नारा देहन के भाई करो या मरो के जौन है। तो एक मतलब यही रहा कि भाई अब आज़ादी के लिए अब पूरी शक्ति से भाई सब केहू संघर्ष करा, अब एक लिए भाई चाहे जौन कुछ करे पड़े। तो भाई जब करो या मरो के भाई नारा दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन जब आह्वान किया गया तो एक असर ये रहा कि भाई पूरे देश में एक जैसे लोगों के अंदर एक उत्साह आएगी एक ऊर्जा आएगी कि भाई अब किसी भी तरह से अपने देश के जो है आज़ाद करा के बैठे। तो भाई ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो एहमा भाई कुछ देश के भाई जो भी बड़े नेता रहन उस समय उनका भी गिरफ्तारी भाई, और एहमा साथे साथे हम कई भाई देखा नेता की जब गिरफ्तारी भाई तो भाई चाहे छात्र हों मजदूर हों किसान भाई आम नागरिक सब लोग भैया हमा मिल के जौन है आंदोलन के आगे बढ़ाएं और जेकर परिणाम स्वरूप रही रहा कि भाई अपन देश आज़ाद भ जौन है। तो हम कही भाई देखा देश के आज़ादी का मकसद यही रहा कि अपन जो देश गुलामी जंजीर से मुक्त हुआ और अपन जो देश रहा विकास एक नई गाथा लिखब शुरू करे। तो आज परिणाम यह है कि देखा हम सब के हुआ अपन देशवासी एक खुली हवा में सांस लेते हैं और एक स्वच्छंद रूप से अपने देश के विकास में हाथ बढ़ावत थे जौन है। तो हमार सब के भाई देखा अपन जौन देश के जौन भी क्रांतिकारी रहन भाई आंदोलन में शहीद भी बहन जौन है तो उनके बलिदान के भाई हम लोग अब श्रद्धा सुमन अर्पित भी करते जौन है। तो भाई देखा बात बात कही होत रही मतलब देखा किसान भाई देखा पंचायत में भैया देखा आज अपने परिवार कल्याण के भी बात हुए भाई बदलते जो बरसात के जो मौसम बा हमारे का संक्रामक रोग हैं लक्षण और बचाव का बात। तो डॉक्टर अजीत चौरसिया से भाई आशुतोष सुंदरन की एक बातचीत भी सुना जाए, लेकिन साथे साथे भाई देखा गीत गौने से अगर स्वागत किए जाए अपने भाई किसान भाई के तो भाई देखा राकेश कुमार संघातिन के गाय देखा गौने व आवाज सुना जाए।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

हाँ किसान भाई, हम कहीं देखा राकेश कुमार संघातिन के गाय गौनई भी हो गए, साथे साथे सनेस भी हो गया जौना है। देखा बात होत रही कि भाई देखा इस समय बारिश के मौसम बाटे, अब बरसात के मौसम में भाई तमाम तरह के ऐसे संक्रामक रोग हैं जो हो जाते हैं, तो भाई उनसे आपके स्वास्थ्य पे जौन है ओकर गलत असर पड़त है जौन है, तो ओकर का लक्षण बा और का बचाव बाटे, एह विषय पर देखा।

0: बरसात के प्रमुख संक्रामक रोग लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर अजीत चौरसिया से भाई आशुतोष सुंदरम के बातचीत बाटे, आवाज सुना जाए।
1: किसान भाइयों, आज हमारे साथ डॉक्टर अजीत चौरसिया हैं। आप स्थानीय स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में फिजिशियन हैं। बड़ी अच्छी बात है कि इस बरसात के मौसम में जहां संक्रामक रोग में बढ़ोतरी होती है, तो उनकी रोकथाम कैसे हो, क्या क्या संक्रामक रोग होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो हमारे श्रोता सबसे पहले जानना चाहेंगे कि संक्रामक रोग हम किसे कहते हैं?
2: जी, संक्रामक रोग वो होते हैं, वे सारी बीमारियाँ जो मनुष्य से मनुष्य में अथवा वातावरण के जरिए मनुष्य में फैलती हैं, जिनमें वातावरण से मेरा तात्पर्य ये है जो बीमारियाँ हवा, पानी, खाना, धूल, मिट्टी, ये कोई भी जो दूषित हवा है, दूषित पानी है, दूषित खाना है, इनके जरिए जो बीमारियां मनुष्यों में फैलती हैं, इनको हम लोग संक्रामक रोगों की श्रेणी में रखते हैं।
1: मतलब जैसे एक आदमी से दूसरे आदमी तक?
2: जी बिल्कुल।
1: या हमारे खान पान के माध्यम से,
2: या खान पान,
1: या हवा पानी के माध्यम से अगर वो बीमारियां फैल रही तो संक्रामक रोगों की श्रेणी में। अच्छा, ये बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें इसकी अधिकता भी हो जाती है इन रोगों की?
2: हाँ, बारिश के मौसम में चूंकि जल जमाव जगह जगह पर हो जाता है, इसके अलावा थोड़ा सा एयर में भी मॉइस्चर अधिक होता है, हवा में मॉइस्चर की मात्रा अधिक हो जाती है, नमी अधिक होती है, तो ये दोनों चीज़ें इसको बढ़ाती हैं, दोनों ही बातों की वजह से इनकी वृद्धि हो जाती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा भी कोई कारण है क्या कि जैसे बरसात के दिनों में हमारा इम्यून सिस्टम कुछ कमज़ोर हो जाता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, इसलिए भी ये बीमारियां कुछ ज़्यादा इनका प्रकोप रहता है?
2: नहीं, प्रतिरोधक क्षमता में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, जो भी होता है ये वायरल और बैक्टीरिया हैं, वायरल हैं, कीटाणु जीवाणु के अधिकता होने के वजह से इन्वायरमेंट में हम लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा उम्मीद होती है इस तरह की इन्फेक्शन लग जाने की।
1: अच्छा, कौन कौन सी मुख्य संक्रामक बीमारियां हैं
2: जी,
1: पहले उनके बारे में चर्चा?
2: हाँ, देखिए बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उसमें एक तो पीलिया को आप रख सकते हैं, जिसको कि हेपेटाइटिस बोलते हैं।
1: हाँ, आजकल बहुत बढ़ जाता है
2: जी, खास करके हेपेटाइटिस ए, क्योंकि इसका जो संक्रमण होता है वो दूषित जल के द्वारा होता है। दूसरा टाइफाइड की समस्या बढ़ जाती है, जो कि दूषित खाने के जरिए हो जाती है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन बढ़ जाता है,
1: बुखार उखार
2: जी बिल्कुल, हाँ, सर्दी जुकाम के साथ में बुखार की अधिकता हो जाती। इसके अलावा मलेरिया या जहाँ पर स्थिर पानी होता है वहाँ पर डेंगू होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा पेट की तमाम बीमारियाँ जिनको डायरिया, डिसेंट्री कहते हैं, ये सारी बीमारियाँ अधिक हो जाती हैं इस मौसम में।
1: अच्छा, हमारे जैसे जो किसान भाई हैं जो गाँव में रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ खास बीमारियाँ जिनका प्रकोप ज़्यादा हो सकता है?
2: देखिए ऐसा है कि इसमें जो कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है वो, इसके अलावा डायरिया, क्योंकि जो पानी होता है ज़्यादातर नलकूप या इन चीज़ों या कुएं का पानी यूज होता है गाँव के क्षेत्रों में, तो उनके दूषित होने का मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि बरसात का पानी भरता है जगह जगह से, अलग अलग जगहों से आकर के उसके प्रदूषित होने की, तो इसमें जल जनित बीमारियां ज़्यादा होने के चांसेस हैं, जिसमें आपका हेपेटाइटिस है, डायरिया है और टाइफाइड है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा बहुत डेंगू के लिए तो संभावना कम रहती है, बेसिकली शहरों की बीमारी होती है, तो जल जमाव ऐसा होता नहीं, तो हम लोग डायरिया और टाइफाइड और ये कोल्ड के बारे में बात करेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियां हैं, चाहे वो शहर में हो संक्रामक रोग या गांव में हो संक्रामक रोग, इनका प्रकोप ज़्यादा रहता है, इनसे बेहतर यही है कि रोग होने पे हम दवाएं लें बचने के लिए, पहले ही हम बचाव के उपाय करें।
2: हाँ जी,
1: वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो क्या उपाय हो सकते हैं?
2: बिल्कुल, बचाव जो है वो सर्वोत्तम उपाय है। तो बचाव के लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी मच्छरों के पैदा होने की जहाँ पे संभावनाएं हैं उन प्लेसेस को हमें रिव्यू करना पड़ेगा, जहाँ पे भी पानी का कलेक्शन है, पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा समय तक जल का जमाव ना हो। दूसरा ये है कि जो भी हम लोग पानी पी रहे हैं वो शुद्ध पानी पिएं, उबला हुआ पानी यूज करें, अगर जैसा कि शहरों में तो फिल्टर वगैरह की व्यवस्था होती है, गांव के लोगों को इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो फिल्टर्ड पानी यूज करें, या जो कुएं हैं, तालाब हैं, उनका क्लोरीनेशन कराया जाए, तो ये हो गया। इसके अलावा
1: कम से कम पीलिया से बच सकते

0: बिल्कुल बिल्कुल पीलिया से बचाव संभव है इसके द्वारा। इसके अलावा हम लोगों को वेस्ट और गार्बेज जो होता है उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सॉर्टिंग या रिसाइकलिंग या कंपोस्टिंग जैसे खाद बनाने में प्रयोग करें बजाय इधर उधर फेंकने के।
1: कहीं गड्ढा बना लें और उसमें सारा कूड़ा डालें ताकि कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो
0: बिल्कुल
1: और फैले ना वो, क्योंकि मुख्य रूप से गंदगी अगर फैल रही है तो उससे बीमारियां बढ़ेंगी मक्खी मच्छर के माध्यम से।
0: ये तो हो गई सामाजिक तौर पे आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हाथों की सफाई, हाथ की सफाई रखना, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हाथ के थ्रू या हाथ जब हमारा खाने पे जाता है उसके थ्रू ही ये बीमारियां पहुंचती हैं
1: जो खाद्य पदार्थों के माध्यम से
0: जाती
1: है।
0: तो उसके लिए हमेशा कभी भी खाना या भोजन या पानी लेने के पहले हाथ को साबुन से धोएं या जो स्टरलाइज सैनिटाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग करें। और जो सबसे अहम बात यह है कि खांसी करते समय रुमाल प्रयोग करें ताकि ये एक इंसान से दूसरे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इसको हम लोग रोक सकें।
1: अच्छा, तो व्यक्तिगत सफाई में अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं
0: जी
1: तो हम काफ़ी संक्रामक रोगों से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी।
1: और हमारे श्रोता क्या ख्याल रखें, क्या ध्यान रखें कि इन रोगों का संक्रमण कम से कम हो?
0: देखिए, संक्रमण रोकने के लिए यही जो बातें हमने बताई कि पानी साफ सुथरा पिएं, हो सके तो उबाल कर पिएं। दूसरा, खाने के पहले या जैसे बच्चे होते हैं घर में उनको फीड कराने के पहले बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और तीसरा, अगर इस तरह का लक्षण कुछ भी बुखार सर्दी जुकाम या जाड़े दे करके बुखार लगने की समस्या आती है या आँखों में पीलापन पेशाब में पीलापन कुछ भी नज़र आता है तो उसके लिए तुरंत जो है चिकित्सक से संपर्क करें।
1: मतलब अगर एक
0: समय रहते
1: जी बीमारी की जद में आप आ गए तो फिर तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना और उसके परामर्श के अनुसार दवा लेना ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें किसी चिकित्सक से और उसका उपचार कराएं, क्योंकि विलंब होने पर समस्या बढ़ सकती है।
1: श्रोताओं, जैसा आपने सुना, डॉक्टर साहब ने सलाह दी है, अगर आप उनका उन पर ध्यान रखेंगे, उनको अमल में लाएंगे तो इस बरसाती मौसम में आप संक्रामक रोग से बच सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं और अपने को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।
2: हाँ किसान भाई, हमको देखा डॉक्टर अजीत चौरसिया जी भाई कितना बढ़िया बात पत कही बताएं कि बरसात के मौसम में कैसे बचाए कर रहा बाटे, कैसे निरोग रहा बाटे। निश्चय रूप से जानकारी बहुत ही लाभप्रद बाटे। हम कह किसान भाई, अपन भाई मौसम के हिसाब से भाई खेती बाड़ी के काम करें और स्वस्थ रहें। और आज तो किसान भाई बस समय इतना ही बाटे। पंचो राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत कर, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रतीक्षा करें।

0: भैया देखो, अपने देश के यार मुख्य व्यवसाय जोन है वो खेती है भैया, लेकिन जनसंख्या बढ़ाए के खातिर अपन जोत जोन है कम हो रही है, तो हमका सबका कुछ इस तरीका अपनावे के है कि हमार खेती पाती भी बनी रहे, हमार जोन बिरवा बिरुख है उन्हों बने रहे और हमार पर्यावरण जोन है वह संरक्षित रहे।
1: बिल्कुल सही कहे हो। और देखो ईका पुनीता बहनी एक है तरीका।

0: जीविका है वो है कृषि वानिकी, जो हम लोग पारंपरिक खेती करित है वो तो करत रही, जैसे कि गेहूं उत्पादन करित है, धान उत्पादन करित है, दलहन है, तिलहन है, लेकिन ई के साथ साथ मा देखो हम पेड़ पौधा भी लगाई। हमारी जो खाली पड़ी भूमि है, परती की भूमि है, मेड़े हैं, उन पर हम चाहे इमारती लकड़ी होए या औषधीय लकड़ी होए, ई का हम उत्पादन करी। इससे न सिर्फ हमारे पर्यावरण सुधरते हैं बल्कि हमारी अतिरिक्त आमदनी भी होते हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: पुनीता भी नहीं, बातें तो बहुत हैं लेकिन हम लोग इनका कुछ जानकारी भी लेते रह चाहिए। आजकल का हो रहा है तो आओ सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों का होगा विस्तार। प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों या मंडल के एक प्रमुख जिले में ड्रोन एकेडमी के नाम से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को कृषि या उद्यान विभाग के फार्मों पर स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों में ग्रामीण युवाओं को ड्रोन निर्माण से लेकर उसकी मरम्मत और संचालन तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जो उनके रोजगार और कैरियर में उपयोगी होगा। गौरतलब है कि ड्रोन की महंगी कीमत के कारण प्रदेश में 90% से अधिक किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में सरकार ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पिछले 2 से 3 वर्षों में प्रदेश में 80 से अधिक ड्रोन बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षित युवा किसानों के खेतों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक और तरल उर्वरकों के छिड़काव में सहयोग करेंगे। इससे किसानों की लागत और श्रम दोनों कम होंगे तथा खेती को स्मार्ट और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच
3: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: अपूर्व भैया,
0: हाँ
1: भैया, देखो हम सब कोई फल फूल सब्जी सब चीजें उगाई थे और उनका उद्देश्य होते कि उसे हमका सबका ज्यादा लाभ मिले, तो उनका कैसे संरक्षित करा जा सकते है, कैसे उनकी मार्केटिंग की जा सकते है, कैसे पैकेजिंग की जा सकते है, इसके बारे में हम बता रही हैं डॉक्टर नीलिमा गर्ग। तो सुन लें जाए
0: आज की बात।
6: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ फल फूल और सब्जियों का उत्पादन आप कर रहे हैं, वहाँ इसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा की पूर्व निदेशक डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फल फूल और सब्जियों की जहां व्यवसायिक खेती कर रहे हैं किसान भाई बहन, वहां अच्छा दाम मिले, इसके लिए ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन?
7: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजी उपज का खेत से बाजार तक का सफर कई चरणों से गुजरता है, जिसमें ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी से उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित होती है और बाजार में उसका उचित मूल्य मिलता है, जिससे कि किसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है। इन सभी चरणों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत।
6: तो शुरुआत करें डॉक्टर साहब ग्रेडिंग की। कोई भी उत्पाद, चाहे वो सब्जी हो, फूल हो, फल हो, उसकी ग्रेडिंग का क्या महत्व है और किसान और उपभोक्ता दोनों कैसे इससे लाभान्वित होते हैं?
7: जी, ग्रेडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि तुड़ाई या कटाई के फौरन बाद किसी फसल की यदि ग्रेडिंग कर दी जाए तो उससे बहुत से तुड़ाई उपरांत नुकसान को बचाया जा सकता है। एक जैसा रंग, रूप, आकार, वजन होने के कारण ये अधिक आकर्षक लगते हैं और मार्केट में अधिक उनका मूल्य मिलता है, इससे किसानों को फायदा होता है।
6: डॉक्टर साहब, ग्रेडिंग के कुछ खास तरीके होंगे?
7: जी, ग्रेडिंग के बहुत से तरीके हैं, जिनमें ये डिपेंड करता है कि हम किस उत्पाद को, किस कमोडिटी को ग्रेड कर रहे हैं। जैसे कि फलों की ग्रेडिंग अलग तरीके से होती है, सब्जियों की थोड़ी अलग होती है और फूलों की अलग। जैसे कि फलों की ग्रेडिंग में हम अधिकतर उनके आकार का ध्यान रखते हैं कि सभी फल एक ही आकार या जैसे एक ही व्यास के हों। जैसे कि सेबों की ग्रेडिंग करें

0: तो हम ये देखेंगे कि एक पेटी में 80 से 100 फल आए, तो उनका जो व्यास होगा वो मोर और लेस एक ही जैसा होगा। इसी प्रकार आम में वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, अंगूर में गुच्छे के वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, और बेरीज में आकार के हिसाब से। कभी कभी फलों की ग्रेडिंग में हम रंग का भी ध्यान रखते हैं कि सभी फल में एक जैसा रंग होना चाहिए।
1: और सब्जियों की ग्रेडिंग?
0: सब्जियों की ग्रेडिंग में हम उनकी ताजगी को देखते हैं कि उनकी पत्तियां जो हैं वो ताजी हों, कुरकुरी हों, मतलब उनमें कड़ापन हो।
1: और डॉक्टर साहब फूलों में?
0: फूलों में ग्रेडिंग हम लोग देखते हैं कि फूल किस एक ही जैसी अवस्था के होने चाहिए, और जो स्टेम की मोटाई है वो एक मानक के अनुसार से होनी चाहिए। सभी स्टेम एक ही जैसी लंबाई के होने चाहिए। जो लंबे स्टेम्स हैं उनकी ग्रेडिंग अलग होती है, और जो छोटे हैं उनकी अलग होती है, जिससे कि जब फूल खिले तो सभी एक ही अवस्था में हों।
1: तो डॉक्टर साहब जो भी ग्रेडिंग है चाहे फल फूल और सब्जियों की, तो इसमें कुछ सरकारी मानक भी हैं क्या?
0: जी, इसके मानक हैं एपिडा है, जो कि निर्यात के लिए जो भी हमारे उत्पाद हैं उनके लिए मानक निर्धारित करता है, और घरेलू बाजार में एगमार्क के मानक के हिसाब से जो गुणवत्ता है वो निर्धारित की जाती है।
1: डॉक्टर साहब ये तो रही ग्रेडिंग की बात, अब पैकेजिंग की बात कर ली जाए। बाजार में जो दिखता है वही बिकता है,
0: जी
1: तो पैकेजिंग के बारे में क्या कहना चाहती हैं फल फूल और सब्जियों की?
0: जी फल फूल और सब्जियों, इन सब की पैकेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी उम्र को निर्धारित करती है। पैकेजिंग जो है उनकी ना सिर्फ सुरक्षा करती है, उनकी वो उम्र को भी, और एक तरीके से मार्केटिंग टूल का भी काम करती है। तो ये एक पैकेजिंग का है कि ये अधिक मूल्य मिलने में सहायता करती है। जी
1: डॉक्टर साहब फल फूल और सब्जियों की पैकेजिंग की बात करें तो कुछ खास तकनीक होगी इसकी?
0: सब्जियों में पैकेजिंग के लिए अधिकतर परंपरागत पैकेजिंग होती है। पुरानी जो पैकेजिंग होती है वो फोम के उसमें होती थी, प्लास्टिक के उसमें होती थी, या फिर हमारे खुले हुए बोरों में, लेकिन आजकल जो है वो प्लास्टिक के जालीदार पैकेजिंग होती है,
1: जी
0: जैसे
1: जालीदार
0: कि
1: बैग।
0: जालीदार बैग्स होते हैं, जैसे कि आलू है या कंद वाली जो फल हैं, आलू प्याज लहसुन इत्यादि, इनको जालीदार में रखा जाता है, जिससे कि नमी ना इकट्ठी होने पाए, सब्जियों में फफूंद की समस्या ना आए। फूलों की पैकेजिंग भी दो तीन तरीके की है। एक तो ये होती है स्लीव पैकेजिंग। तो स्लीव पैकेजिंग तो ऑर्डिनरी जो हम बाजार से फूल खरीदते हैं, आप देखते होंगे उसके ऊपर उपभोक्ता अपनी लोगो और अपने जो भी मार्केटिंग के जो भी प्रमोशन के लिए जो भी चीज़ें वो सब लिखवा देता है, और फूलों को एक तरीके की सुरक्षा भी प्रदान करती है, और उनको थोड़ी देर तक नमी के लॉस से भी बचाती है, जो प्राइमरी पैकेजिंग है। उसके बाद फूलों के लिए हम लोग कार्डबोर्ड पैकेजिंग भी होती है, अगर आपको लंबी दूरी तक भेजना है, और यदि आपके फल फूल के नमी बहुत जल्दी नुकसान होगी, तो आजकल हाइड्रेशन पैकेजिंग भी होती है, जिसमें कि पानी युक्त बोतलें रहती हैं, या फिर जेल रहता है, और या फिर उसमें फोम रहता है, भीगे हुए फोम, जिसमें कि हम फूलों को पैक करके भेजते हैं, जिससे कि नमी की कमी ना होने पाए।
1: डॉक्टर साहब जो भी फल फूल और सब्जियां किसान भाई बहन पैदा कर रहे हैं, कई बार मार्केट में भाव समय से नहीं है तो उसको भंडारण करना होता है,
0: जी जी
1: तो भंडारण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस समय?
0: भंडारण में तो एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर तो आपके जो लोकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जिसको हम बोलते हैं, कि
1: जी
0: ज़मीन के नीचे और गड्ढे में दबा दीजिएगा आप अपना, या फिर एक टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर खुले में भी रख सकते हैं, एक ईंटों का स्ट्रक्चर बना के, और उसमें यदि दो दीवारों के बीच में आप रेत भर के और उसमें पानी सर्कुलेट करते हैं, और थोड़ी हवा का वेंटिलेशन की भी व्यवस्था रखते हैं, तो उसमें हमारी सब्जियाँ ज़्यादा देर तक रखी रहती हैं। इसके अलावा जो भंडारण के लिए शीत गृह जो है वो एक आजकल बहुत ही प्रचलित हो गए हैं, और जहां पर भी है तो लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम अपने फल और सब्जियों को थोड़ा भंडारण कर लें। तीसरे तरीके की जो भंडारण का है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि जो कमोडिटी है उसकी श्वसन दर को कम कर दिया जाता है।
1: डॉक्टर साहब अब मार्केटिंग महत्वपूर्ण है और मार्केटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग भी जरूरी है,
0: बहुत ज़रूरी है, आजकल तो जो दिखता है वो बिकता है।
1: इसमें सोशल मीडिया
0: जी जी
1: और
0: इंस्टाग्राम,
1: डिजिटल प्रचार का
0: बिल्कुल
1: भी।
0: फेसबुक इंस्टाग्राम पे आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी चीज़ों को पहले इन मार्केट्स में पहले पॉपुलराइज करते हैं, लोकप्रिय बनवाते हैं, और फिर लोग अपने आप से उनको कॉन्टैक्ट करते हैं।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग पैकेजिंग भंडारण और मार्केटिंग के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता

0: पावे।
1: 94-15-78-66-33।
2: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं किसान भाइयों बहनों का, फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग के बारे में डॉक्टर साहब?
0: मैं सभी किसान भाई बहनों से मैं ये आग्रह करूंगी कि वो हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ग्रेडिंग की, उनका इस्तेमाल करें या फिर किसी मशीन से करें, और उसके बाद खूबसूरत पैकेजिंग करें जिससे कि आपका उत्पाद सुंदर दिखे और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े। आजकल ऐसी स्मार्ट पैकेजिंग भी हैं जिसमें कि आप ट्रांसपोर्ट के दौरान ही उसमें आप मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर रखते हैं जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, तो हम लोग अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
2: डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा, आज आप कार्यक्रम में आए और फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अपूर्व भैया,
4: हाँ पुनीता
3: भैया, देखो सावन है, हर तरफ हरियाली और ये रिमझिम गिरत बूंदे, और अगर ऊपर झूला ना झूला जाए तो बड़ा सुना रह जाते।
4: बिल्कुल,
3: तो भैया कहे ना सुन लीन जाए अपनी बैठकी में, यहाँ एक झूला गीत मोरी चुनरी रंगाई दो, और स्वर है अनुज श्रीवास्तव और ममता सक्सेना के।
4: बिल्कुल सही कहो, तो आप सुन लीन जाए यू लोकगीत।

0: पुनीता बहनी।
1: हाँ पूर्व भैया,
0: देखो हम पंच अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने किसान भाई हैं इनका तमाम तरह की सूचना साझा कीन करित है, और जब कोई किसान भाई अपने कार्यक्रम में आय का अपन अनुभव साझा करते हैं तो वही का प्रभाव अपने पंच भाई पर बहुत परत है।
1: तो भैया आज के किसान हैं संदीप कुमार वर्मा भैया, जो उन बता रहे हैं अपने जरवेरा फूल उत्पादन के बारे में है। तो भैया लीन जाए या जानकारी।
2: किसान भाइयों बहनों, आज आपको ले चलते हैं बाराबंकी जनपद के रामनगर ब्लॉक के मोती नगर बेरिया गाँव, जहाँ फूलों की संरक्षित खेती से जुड़े संदीप कुमार वर्मा भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। संदीप वर्मा भैया, आप फूल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कितने क्षेत्रफल का पाली हाउस है जिसमें आप फूल उत्पादन कर रहे हैं?
3: इस समय हमारे पास डॉक्टर साहब 16,000 स्क्वायर मीटर लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में हमारे पास पॉली हाउस है, जिसमें हम जरबेरा पुष्प का उत्पादन कर रहे हैं। हाँ। और इसको लखनऊ मंडी में बेच रहे हैं।
2: तो इसकी शुरुआत हुई कब से?
3: डॉक्टर साहब ये हमारी शुरुआत हुई है अक्टूबर 2014 में, हमने पहले पॉली हाउस का निर्माण करवाया था जो कि आधा एकड़ का एरिया था हमारा। ये 3 महीने हमको स्ट्रक्चर बनाने में लगे, उसके बाद 7 जनवरी 2015 में हमने जरबेरा पौधे का प्लांटेशन किया।
2: यानी 12 साल हो गया आपको फूलों की संरक्षित खेती से जुड़े।
3: जी,
2: तो आज किस मुकाम पर अपने को पाते हैं फूल उत्पादन में?
3: फूल उत्पादन में आज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत अच्छे मुकाम पे पाते हैं। 2000 स्क्वायर मीटर यानी कि आधा एकड़ से हमने स्टार्ट किया था, और आज हम करीब करीब 16,000 स्क्वायर मीटर लगभग 4 एकड़ में काम कर रहे हैं। अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो खेती में और किसी भी काम से बहुत ही अच्छा काम है।
2: तो ये बताएं कि पाली हाउस में कौन कौन फूल पैदा करते हैं आप?
3: पॉली हाउस में हम तो केवल जरबेरा ही पैदा करते हैं।
2: और 4 एकड़ पूरा जरबेरा ही है?
3: जी जी, पूरा 4 एकड़ जरबेरा ही है।
2: तो पूरे साल की दिनचर्या क्या है आपकी सुबह से शाम तक की?
3: दिनचर्या ये है कि सुबह जैसे हम आ गए अपने फार्म पे, अपने खेत पे आ गए जिसपे कि हमारा पॉली हाउस लगा हुआ है, तो दिन भर हमने काम देखा, फिर शाम के वक्त फूल को निकलवा लिया, फूल की पैकिंग करवाई, उसके बाद उसको जो है पैकिंग करवा के शाम को एकदम फिट कर दिया। सुबह वो मंडी ले जाया जाता है, ज्यादातर लखनऊ मंडी लेके जाते हैं, तो लखनऊ मंडी लेके गए, अपना सेल हो गया, उसके बाद आए घर नहाए धोए, उसके बाद फिर अपने फार्म पे 9-10 बजे तक अपने फार्म पे आ जाते हैं।
2: यानी अपने खेत पर होते हैं दिन भर?
3: जी जी, लगभग पूरे दिन का करीब 70% जो अपने खेत पे बीतता है।
2: तो जरबेरा उत्पादन में कौन कौन सी बारीकी आपने 12 साल में अनुभव किया?
3: जरबेरा उत्पादन में सबसे बड़ी बारीकी ये है कि एक तो ये खेती में थोड़ा ज्यादा पूंजी लगने वाला काम है, तो इसमें देख रेख आप जो भी करें, जैसे जो भी फसल है किसान लोग लगाते हैं, जैसे धान गेहूं या ट्रेडिशनल फसल कोई भी लगाई, तो उसमें डेली मॉनिटरिंग नहीं होती, डेली उसकी देख रेख नहीं होती। लेकिन ये काम ऐसा है जरबेरा पुष्प का जो आपको हर एक दिन आपको उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, कहाँ पे कौन सा फंगस लग रहा है, कहाँ पे कौन सी बीमारी लग रही है, कहाँ पे कौन सा कीड़ा लग रहा है, और कहाँ पे उत्पादन कम आ रहा है, कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे अच्छी क्वालिटी आ रही, कहाँ पे खराब क्वालिटी आ रही, आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो मंडी में माल बिकेगा वो आपकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी पे डिपेंड होके ही बिकेगा, कि आप उससे अच्छा मुनाफा निकाल पाएंगे, वरना फिर जो ज्यादा पूंजी लग रही फिर आप जो है

0: धीरे धीरे घाटे में चले जाएंगे।
1: तो आप इसको लगाते कब हैं और एक बार लगाने के बाद कितने दिन तक फूल आपको मिलता रहता है?
0: डॉक्टर साहब, इसको लगाने का जो अच्छा समय होता है वो तो प्लांटेशन का मतलब जो समय होता है वो 15 अगस्त होता है। जो तीन समय होते हैं साल में, एक तो आप 15 अगस्त में करा लीजिए, दूसरा आप जो है 15 अक्टूबर को करा लीजिए, तीसरा समय जो होता है वो फरवरी के पहले हफ्ते में करा लीजिए, जनवरी के लास्ट हफ्ते में करा लीजिए या तो फरवरी के पहले हफ्ते में करा लीजिए। केवल तीन मौसम है साल में जिसमें आप इसका जरबेरा पुष्प का आप प्लांटेशन करा सकते हैं। उससे पहले 3 महीने आपको लगेंगे पूरा स्ट्रक्चर बनाने में। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जब आप संपर्क करेंगे वहां से आपकी फाइल पास हो जाएगी, उसके बाद आप स्ट्रक्चर बना के आप प्लांटेशन करा दीजिए, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आपको फूल मिल जाता है। जैसे मिला मतलब फूल तो लगभग 2 महीने में ही आ जाता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग की जो 2 कली होती है उनको आप डिबडिंग करनी पड़ेगी आपको। उसका आपने डिबडिंग किया, उसके बाद जो तीसरी फ्रेश फूल आया उसको आप निकालना चालू कर दीजिए, पैकिंग करके मंडी में सेल करिए। तो ये प्रोसेस ये है कि 3 महीने बाद जब से फूल आना चालू होगा तो करीब करीब आपका 4 से 5 साल तक अगर अच्छी देखरेख है, अच्छी मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, लेबर अच्छी है, लेबर पे आप ध्यान दे रहे हैं, आप जो काम बता रहे हैं वो लेबर कर रहा है, तो करीब करीब इससे 4 से 5 साल तक के आप फूल निकालेंगे, 4 से 5 साल तक के आपको रेगुलर आमदनी होगी डेली बेसिस पे।
1: 12 साल का आपका तजुर्बा है फूल उत्पादन का पाली हाउस में, तो पूरे साल में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: देखिए, मोटा मोटा हम 1 एकड़ का बता के चलेंगे, आप उसी में जो है किसान भाइयों को हम समझाने के लिए 1 एकड़ का लेके चलते हैं। देखिए, अगर आप खुद से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद से केवल देख रेख कर रहे हैं, तो मोटा मोटा इसमें जो लागत, जो रनिंग जो लागत लगती है, जो मंथली खर्चा आता है, मोटा मोटा 70 से 80 हजार रुपए आएगा। मान के चलिए करीब करीब 10 लाख रुपए लगभग आपका 1 साल का खर्चा हो गया, और जो आपकी बिक्री जाएगी वो करीब करीब अगर 4 रुपए फूल का औसत पकड़ के चले तो करीब करीब लगभग 1 एकड़ में 10 लाख फूल निकलेगा, तो 10 से 40 लाख रुपए जाएगा, जिसमें से 2 रुपए करीब आप खर्चा निकाल लीजिए एक फूल पे, तो लगभग 20 लाख रुपए आपके खर्चे में चले जाएंगे। ये मतलब हम मोटा मोटा बता रहे हैं डॉक्टर साहब, कि इसमें कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ किसान होते हैं अपने हाथ ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने हाथ ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, उनका काम पूरा लेबर पे डिपेंडेंट होता है, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो करीब करीब 20 लाख रुपए आपको शुद्ध मुनाफा हुआ साल में। किसान इतना भी ना माने, किसान आप मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए कि 1 एकड़ में साल में 12 से 15 लाख रुपए हर हाल में आपको बच जाना है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, हमारा मोबाइल नंबर है 9670-56-83-13, 9670-56-83-13, 9670-56-83-13।
1: चलते चलते कुछ और कहना चाहते हैं आपकी कहानी के बारे में?
0: जी बिल्कुल कहना चाहते हैं हम, ये अपने देश के युवाओं से एक हमारी अपील है या हमारी रिक्वेस्ट है, हम उसको आग्रह करना चाहेंगे कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ भागने से अच्छा है, अगर आपके पास खेत है तो आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करिए। इस समय गवर्नमेंट कुछ लोन सुविधा अच्छे इंटरेस्ट 3% रेट इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दे रहे हैं, अगर जिन युवाओं के पास अपना पैसा खुद की पूंजी नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके, ये एक बहुत ही अच्छा बहुत ही फ्यूचरिस्टिक काम है, ये जो प्रोटेक्टेड संरक्षित खेती है, ये समझ लीजिए अपने देश की खेती को बहुत आगे ले जाने का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में लग के अगर गाँव में आके कुछ काम करेंगे तो गाँव के लोगों को भी रोजगार देंगे, प्लस अपना अच्छी आमदनी करेंगे, अपने घर के घर रहेंगे और एक अच्छा मुनाफा जो है आप तो प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने खेत का इस्तेमाल करें, उसको खेत से अच्छी पूंजी निकालने का प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से अगर आप अच्छी मेहनत करें तो निश्चित रूप से यहाँ की खेती, अपने भारत की खेती एक बहुत अच्छी दिशा में जाएगी।
1: संदीप कुमार वर्मा भैया, आज के किसान क्रम में आपसे इतनी अच्छी बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उन

0: काकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: पुनीता बहिनी।
2: हाँ पूर्व भैया।
1: देखो हम पंचन का प्रयास रहते हैं कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाइन का हर वह जानकारी दीन जाए जी की उनका आवश्यकता रहा।
2: बिल्कुल भैया।
1: लेकिन तब कबो कबो यू होते है जो उनका जानकारी चाहिए होते वह हम न दे पाए थे।
2: हाँ तो एक ही खातिर है ना कि वे हमका चिट्ठी पत्री के माध्यम से नहीं लिख के पूछ सकते हैं कि वे काज जाना चाहते हैं और अपन कार्यक्रम कैसे के बारे में सुझाव भी दे सकते।
1: बिल्कुल। तो पता बताओ।
2: तो भैया कार्यक्रम

0: के माध्यम से नहीं, लिख के पूछ सकते हैं कि वे कहाँ जाना चाहते हैं और अपन कार्यक्रम कैसे इसके बारे में सुझाव भी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो पता बताओ।
0: तो भैया, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, और भैया पिन कोड है 226001।
1: आओ अपने पंच भाई, देखो मोबाइल का और मेल का भी उपयोग करते
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल भैया, तो अपन हाथ में यहाँ फोन है, तुरंत है हमका लिख दें इसे।
1: बिल्कुल, तो उनका मेल भी बता दी जाए।
0: बिल्कुल भैया, कार्यक्रम के ईमेल आईडी है FARMANDHOME फार्म एंड होम ALKO@gmail.com।
1: तो पंच भाई, हम सब लोग मिलकर आपका मेल का या आपके पत्रन का इंतजार करीबा। और यह के साथ देखो अपने कार्यक्रम का समय भी समापन की तरफ बढ़ रहा है। तो पंच भाई से लीन जय विदा। जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कहा, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में इको एजुकेशनल हब का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सोच की परिकल्पना को साकार करता है ये केंद्र। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा में 2 दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में हुए शामिल। एआई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कार्यों को सराहा और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में एक मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। इसके साथ ही पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी

0: शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सम्मान, सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता से कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा के लिए तैयार है।
1: कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब तैयार
0: है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, जोन, रेंज, जनपद, थाना स्तर के साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी भी अभियान का हिस्सा बनकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उधर उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि कांवड़ मेला 2026 के दौरान रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए सहारनपुर हरिद्वार सहारनपुर अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ी का संचालन आज से 10 अगस्त तक किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में CSIR NBRI के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक संस्थान अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है बल्कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इको एजुकेशनल हब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें विज्ञान, सतत विकास और जनभागीदारी को एकीकृत करते हुए देश की वनस्पतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने इस बात पर बल दिया कि वैज्ञानिक संस्थानों को उभरती पर्यावरणीय एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समन्वय करना चाहिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये केंद्र विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम का एक अनूठा मंच सिद्ध होगा।
2: प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहें तो आकर के अपने प्रदेश के उस पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के यहाँ विधिवत PhD और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल आज आगरा में 2 दिवसीय AI फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश AI के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि AI को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप जो कार्य हो रहे हैं उसका असर धरातल पर दिख रहा है।
3: जहाँ AI एडॉप्शन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य जो हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, किससे कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे AI का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा और ख़ास तौर से हमारे युवा जिनकी आज प्रतिभा मैंने देखी, ये जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेजेस में, उनको AI के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि AI के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
4: AI का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। 2 दिवसीय था इस वैचारिक मंथन से अमृत निकलेगा, वो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा।
0: SP सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रयागराज में KP ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद एवं क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्थानीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं, जनहित से जुड़े विषयों तथा स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्या

0: समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बस्ती में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए चादरों और एसी की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके इलाज और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
1: मरीजों को अभी तक वातानुकूलित सेवाएं वहां उपलब्ध नहीं थी, तत्काल एसी लगाए जाने के निर्देश दिए। पूरे वार्ड को वातानुकूलित किया जाए, इसके लिए धनराशि रोगी कल्याण निधि में उपलब्ध है। अस्पताल परिसर की पूरी मरम्मत किया जाए, सड़कें जो टूटी हैं बनाई जाए।
0: प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार एक पहल करने जा रही है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में तैनात IAS, IPS और IFS के युवा अधिकारी हर माह कम से कम एक इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय का भ्रमण कर विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें। एक रिपोर्ट।
2: अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों में सहभागितापूर्ण चर्चा और प्रश्नोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी प्रत्येक माह इन कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करेंगे। प्रत्येक जिले को आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण तैयार कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना होगा। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल और प्रभावी आयोजन के संबंध में अमरोहा में जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ ने लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। वहीं पीलीभीत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सिद्धार्थनगर जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान डुमरियागंज एवं बांसी में लगभग 311 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के जनपद भ्रमण से सिद्धार्थनगर जिले को विकास की कई सौगातें मिलेंगी। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। नोएडा में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई भागों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कहा, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में इको एजुकेशनल हब का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सोच की परिकल्पना को साकार करता है ये केंद्र। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा में 2 दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में हुए शामिल। एआई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कार्यों को सराहा और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर नीरज सिंह की वार्ता, स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव।
1: 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन

स्वदेशी आंदोलन था जो बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ होकर पूरे भारतवर्ष में फैल गया। स्वदेशी आंदोलन राष्ट्र की नवजागृत चेतना का प्रतीक और संदेशवाहक के साथ साथ आर्थिक राष्ट्रवाद और भारतीय पूंजीवाद के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर भारत में स्वदेशी आंदोलन की हम बात करें तो 1905 से बहुत पहले ही हिंदी साहित्यिक रचनाओं में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पे जोर डाला जा रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वदेशी का नारा ही नहीं लगाया अपितु स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार की शपथ लेने के लिए कवि वचन सुधा के 23 मार्च 1874 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था उसमें शपथ पत्र प्रकाशित किया। नवंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेला में उनका एक भाषण था और भाषण का शीर्षक था भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत कीजिए, अपने निज काम की वस्तु बनाइए। इसी तरह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय उद्योग एवं स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जोर डाला जा रहा था। महाराष्ट्र में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही गोपाल राव देशमुख, जीवी जोशी तथा 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने विदेशी वस्तुओं के लिए बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। तिलक जी ने 1903 में बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर की स्थापना की। दूसरी तरफ दादा भाई नरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से भारत से जो धन ब्रिटेन को जा रहे थे उस पे उन्होंने प्रकाश डाला और 1905 के पूर्व में ही भारत जो विदेशी वस्तुओं का आयात कर रहा था भारतीय आर्थिक जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था भारत के अग्रिम नेताओं ने इस बात को जान लिया था। लेकिन ये एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ 7 अगस्त 1905 कोलकाता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में हजारों युवाओं ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जुलूस निकालकर स्वदेशी के पक्ष में आंदोलन चलाया और इसमें विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार शामिल था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और उसके साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पे जोर डाला गया और अब ये एक आंदोलन का रूप ले चुका था। स्वदेशी आंदोलन के तहत कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए, उसमें पहला था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी को अपनाना, हड़ताल कर प्रशासन को निष्क्रिय बनाना, रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल देना, सामाजिक कृतियों का विरोध करना और स्वदेशी उद्योग एवं कल कारखानों का निर्माण करना। कार्यक्रम में अन्य चीजें भी शामिल था जैसे राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वदेशी स्कूल और कॉलेज को खोलना। अगर आप देखेंगे तो इस आंदोलन के कार्यक्रम में एक तरफ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार शामिल है तो दूसरी तरफ स्वदेशी को अपनाना और स्वदेशी को अपनाने के लिए किस तरह के विचार की जरूरत है वो रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से रखा गया। इस आंदोलन की कार्य पद्धति क्या थी तो छोटे छोटे या बड़े समितियों का निर्माण कर, जैसे उस समय स्वदेश समिति, बारिसाल समिति, स्वदेश बंधन समिति जैसे छोटे छोटे समिति भारत के अन्य भागों में बनाए गए, खासकर बंगाल, और इस समितियों के माध्यम से आम जनता को संगठित कर स्वदेशी के पक्ष में लाना, विदेशी वस्तुओं के का बहिष्कार करना और प्रशासन को पंगु बनाने का काम किया गया। इसमें धार्मिक प्रतीक एवं नारों का उपयोग किया गया, जैसे आप देखेंगे तो रक्षाबंधन मनाया गया, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पर रक्षाबंधन बांधते थे, गंगा स्नान, वंदे मातरम जैसे नारा जो गीत था उस समय एक स्लोगन बन गया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में

सबसे मुखर स्लोगन के रूप में ये उभरा। धार्मिक मेला का आयोजन किया गया और उसी तरह आप देखेंगे तो गणपति महोत्सव, शिवाजी जयंती जैसे मेलों का आयोजन कर भारतीयों के बीच में स्वदेशी के पक्ष में आने के लिए और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया। इस आंदोलन प्रारंभ हुआ बंगाल से, लेकिन कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में ये पूरे भारत में विस्तृत हो गया। अब देखें तो बाल गंगाधर तिलक जो पहले से ही स्वदेशी के पक्ष में थे, उन्होंने मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने बंगाल के क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया। हैदर राजा दिल्ली, चिदंबरम पिल्ले मद्रास, लियाकत हुसैन बिहार। इस तरह कांग्रेस के और अन्य नेतागणों ने इस आंदोलन को भारत के अन्य भागों में नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन की एक और खास बात थी, इस आंदोलन से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, महिलाएं और जमींदार वर्ग भी जुड़े। शहर के लोग ज्यादा इस आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन को लोकप्रिय करने में पत्र पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सरस्वती ने इससे संबंधित बहुत सारे लेख लिखे। सरस्वती में एक छपा हुआ था, अपना बोया आप ही खाओ, अपना कपड़ा आप बनाओ। निश्चित तौर पर इसमें अपने द्वारा जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसको स्वयं से उत्पादित करना, उत्पन्न करना और उसका उपभोग करना, ये स्वदेशी सिर्फ एक स्लोगन नहीं था बल्कि आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम था। आगे देखें, आज दैनिक के संपादक बाबूराव विष्णु जी ने लिखा, खादी की बिक्री बढ़े तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सफल हो जाए, बहिष्कार सफल हो जाए तो स्वराज मिले। आत्मनिर्भरता की बात थी स्वदेशी के माध्यम से। दूसरी तरफ आप देखें, स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा पे जोर दिया गया। टैगोर जी के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य अरविंद घोष जी को बनाया गया। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया और तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। निश्चित तौर पर उत्पादन के लिए तकनीकी शिक्षा का होना जरूरी था। पूरे स्वदेशी आंदोलन में एक बात उभर कर आई कि आत्मनिर्भरता। आगे जाकर आप देखेंगे तो कपड़ा मिल, साबुन, माचिस के कल कारखाने, चर्म उद्योग, बैंक एवं बीमा कंपनियां भी इस समय स्थापित हुई। जैसे आप देखें तो 1906 में बंग लक्ष्मी कॉटन मिल, 1906 में कलकत्ता पोटरी वर्क्स, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, टाटा स्टील एंड कंपनी टिस्को 1907 में। इससे पूर्व ही पीसी रॉय साहब ने 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की। उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब भी लिखी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। एक कंपनी जो स्थापित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जो आवश्यकता आयात पर निर्भर है, ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं पर निर्भर है, उससे दो समस्याएं हैं। एक तो हमारे देश का धन बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई में भी वो एक दिक्कत या एक समस्या खड़ा कर रहा था। यद्यपि इन मिलों में से ज्यादातर मिल चल नहीं पाए, क्योंकि जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें निश्चित तौर पर ब्रिटिशर्स को लाभ दिलाने की नीति थी, लेकिन ये कंपनी देशभक्ति से प्रेरित था, स्वावलंबन के उद्देश्य से प्रेरित था और आगे चलकर इन्हीं में से कुछ कंपनियां बड़े कंपनी के रूप में उभर कर आई। आप देखेंगे तो इस आंदोलन के दौरान ब्रिटेन से आयात होने वाले वस्तुओं में काफी कमी आई। 1907 में 1906 के मुकाबले भारत में कपड़े के आयात के मूल्यों में 1.5 करोड़ की कमी आई। धीरे धीरे ये आंदोलन बड़े स्तर पर बढ़ रहा था तो सरकार ने इस आंदोलन के दमन के लिए कई सारे कानून बनाए, जैसे कार्लाइल सर्कुलर जिसमें विद्यार्थियों को आंदोलन से दूर रखने की चेतावनी दी गई, वंदे मातरम
जो एकता का प्रतीक बन गया।

0: था उस पर प्रतिबंध लगाया गया और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट लगाए गए, 1908 में एक एक्ट आया और स्वदेशी से संबंधित सामग्री जो छापी जाती थी उस पर रोक लगाया गया। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में आया। 1910 के बाद ये आंदोलन की गति धीमी होती चली गई। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि एक तो ब्रिटिश सरकार की नीति राष्ट्रवादियों को जेल में डालना, आंदोलन को दमित करने के लिए कानून का सहारा लेना, अरविंदो और बीसी पाल जैसे नेता का जो नेतृत्व इस आंदोलन को प्राप्त हो रहा था उनका संन्यास ले लेना, और कांग्रेस की फूट। आंदोलन के शुरुआत से ही कांग्रेस में दो तरह की विचारधारा थी, एक स्वदेशी पे बात करते थे लेकिन बहिष्कार की नीति के समर्थक नहीं थे, और 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गया। इस आंदोलन के परिणाम को अगर हम देखें तो इसने भारतीयों के मन में आत्मनिर्भरता, आत्म सम्मान और एकता की गहरी भावना जगाई। बाद में महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी को स्वराज की आत्मा कहा और इसे अपने स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। बड़े स्तर पर आयात में कमी आई, राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार को इसने मजबूत किया, भारतीय उद्योगों की स्थापना हुई, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई, भारतीय कला का विकास प्रारंभ हुआ जिसमें मुगल और राजपूत पेंटिंग को पुनः बनाए जाने लगा, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का बहुत योगदान था। आंदोलन के सामाजिक दायरे में भी वृद्धि हुई, आंदोलन में महिलाएं विद्यार्थी खुलकर भाग लिए, और इस आंदोलन का एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव था क्रांतिकारी आंदोलन का विकास। अब देखेंगे तो 20वीं सदी के प्रारंभ से क्रांतिकारी आंदोलन का बड़ा तेजी से भारत में विकास हो रहा। ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जिसने आम जनता को संगठित किया, यद्यपि इस आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने नकारात्मक प्रभाव डाला, जैसे साथ में बंगाल में दंगा जिसने सांप्रदायिकता को विकसित किया। इस आंदोलन का स्वरूप नगर तक ज्यादा सीमित था, गांव इस आंदोलन से दूर रहे और किसान लगभग आंदोलन से बाहर। यद्यपि इस आंदोलन ने जो मूल मंत्र दिया आत्मनिर्भरता का, वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान चलता रहा। गांधी जी ने भी खादी के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ही बात कर रहे थे, क्योंकि आत्मनिर्भरता आत्म सम्मान को जन्म देता है और फिर आत्म सम्मान राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करता है। इसलिए एक बार जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो भले ही स्वदेशी आंदोलन के नाम पर यह समाप्त हुआ, लेकिन स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन कभी भी नहीं रुके। 1915 तक आते आते भारत में कल कारखानों की स्थिति बढ़ी और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और तेजी से विकसित हुआ। आज स्वतंत्र भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में एक योजना चलाया गया, उसका भी उद्देश्य अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन गुणवत्ता को बढ़ाना है, क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए अपने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इस बीज को स्वदेशी आंदोलन ने 20वीं सदी के प्रारंभ में ही रखा और आज हम देखेंगे कि आर्थिक रूप से बहुत सारी चीजों पर हम निर्भर हैं, उसके पीछे मुख्य कारण स्वदेशी आंदोलन का था, और हम अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं। निश्चित तौर पर आज जहां हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं उसमें स्वदेशी आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान देता है। धन्यवाद।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरज सिंह की वार्ता, स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडिया में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं श्रुति सिंह चौहान। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में कबीर दास का भजन।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं श्रुति सिंह चौहान। अभी आप सुन रहे थे इनके स्वर में कबीर दास का भजन। आइए अंत में सुनते हैं इनके स्वर में सीतेश आलोक का लिखा गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी श्रुति सिंह चौहान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन

विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक 2 शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया।

और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान

0: की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति PAC की सिफारिश पर लाई है और PAC की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को ही थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम भी 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।

0: विधानमंडल समीक्षा, आइए सुनते हैं विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव।
1: विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। 18वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार काफी संक्षिप्त रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र के कार्य दिवस के लिए 4 दिन निर्धारित किए गए थे। श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी जैसे अन्य मुद्दों को लेकर सदन में हुए शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मात्र 3 दिन ही चली। 3 दिन में भी कुल 5 घंटे 32 मिनट की कार्यवाही में 2 घंटे 49 मिनट का स्थगन रहा, जबकि 2 घंटे 43 मिनट तक सदन की कार्यवाही प्रभावी रूप से संचालित हुई। सत्र के दौरान विभिन्न विधायी संसदीय एवं प्रक्रियागत कार्यों का निष्पादन किया गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सत्र के दौरान याचिका समिति को कुल 435 याचिकाएं प्राप्त हुई। परीक्षण के उपरांत 282 याचिकाएं स्वीकार की गई। प्रश्न व्यवस्था के अंतर्गत इस सत्र में कुल 2427 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 490 तारांकित तथा 1466 अतारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए। इनमें से 120 उत्तरित तारांकित एवं 838 उत्तरित अतरांकित प्रश्नों के उत्तर शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के चलते जहां सदन के सारे कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। सत्र के तीसरे और अंतिम दिन ही सदन में जहां ध्वनि मत से अनुपूरक बजट पारित किया गया, वहीं संभल हिंसा की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान सदस्य आलमबदी सहित 21 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और सदन के वरिष्ठ सदस्य आलमबदी के निधन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आलमबदी इस सदन के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे और 5वीं बार निर्वाचित होकर आए थे। नेता सदन के अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित सभी दलीय नेताओं ने आलमबदी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर इसे सदन के अपूर्णीय क्षति बताया। इसी दिन विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया।

0: सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा के सदस्य श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में गए। सपा सदस्यों की मांग थी कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही सरकार ने अपने विधायी कार्यों को निस्तारित किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बार बार कहने के बाद भी सपा के सदस्य अपने आसन पर नहीं गए। हंगामा कर रहे सपा सदस्यों को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। उनकी इस चेतावनी के बाद भी सपा के सदस्य शांत नहीं हुए। हंगामे के दौरान ही सपा के सदस्य सचिन यादव ने सदन में मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लहराने पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। बावजूद इसके वह नहीं माने तो उन्हें बलपूर्वक शेष सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। स्थिति तब अभूतपूर्व हो गई जब नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। उनके वक्तव्य के समाप्त होने तक सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। शोर शराबे के दौरान भाजपा और सपा सदस्य दोनों आमने सामने आ गए। सदन के सुरक्षाकर्मियों से धक्का मुक्की भी की। सदन स्थगित होने के बाद भी सपा के सदस्य नारेबाजी करते रहे और धरना देते रहे। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सदस्यों का आचरण प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं से विश्वासघात है। जिस मंच का उपयोग जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए होना चाहिए, वहां पर इस तरह का शोर शराबा और हंगामा लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है। सत्र का तीसरा और अंतिम दिन भी शोर शराबे और हंगामे से सराबोर रहा। इसी बीच जहां विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं विपक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना नहीं छोड़ा। सपा सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान किए शोर शराबे और हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्षोभ व्यक्त किया। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य फिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही सदन में जहां सारे विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक का ध्वनि मत से पारित हो गया। सत्र के अंतिम दिन ही संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। सपा सदस्यों द्वारा शोर शराबे और हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधायिका किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि वाद विवाद, सहमति और असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा हमें ध्यान में रखनी होगी। संसदीय आचरण की परिधि लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है।
1: यह थी विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: विधान परिषद सदन की कार्यवाही बीते सप्ताह मात्र 3 दिन ही चली। प्रस्तावित कार्यक्रम से 1 दिन पूर्व ही सदन की बैठक समाप्त हो गई। हालांकि पहली बार सदन में पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और शिक्षा के गिरते स्तर व बेसिक स्कूल बंद होने के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा, लेकिन सरकार ने भी पूरी तैयारी से विपक्ष को करारा जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही सदन में अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए और सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। पहले दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में सदन ने अपने पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59 में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है तथा इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही उन्होंने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद

0: 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना, हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। निर्दलीय समूह के नेता राज बहादुर सिंह चंदेल ने शिक्षणेतर कर्मचारियों और रिटायर्ड शिक्षकों कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किए जाने का मुद्दा कार्यस्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए बड़ा काम किया है, यदि कोई वर्ग छूट रहा है या कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री से बात करके रास्ता निकालेंगे। दूसरे दिन मंगलवार को समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहवाज खान, शाह आलम ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर और बेसिक स्कूल बंद किए जाने का मुद्दा कार्यस्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे गलत हैं, ये जनता को भ्रमित कर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए सपा सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में नगरों के फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण तथा अवैध कब्जों को हटाने एवं जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार इनके प्रमोशन की तैयारी कर रही है, प्रमोशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। तीसरे दिन बुधवार को अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक बहुमत से पारित हुए। अनुपूरक बजट पारित कराने के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने आपत्ति दर्ज कराते हुए चर्चा कराने की मांग की। इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हुआ। सभापति के निर्देश के बाद भी बैठे नहीं और विरोध करते रहे। वह सभापति तथा नेता सदन पर टिप्पणी की और सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद भाजपा सदस्यों की मांग पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सदन में पारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: विधानमंडल समीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं वारसी ब्रदर्स की ये कव्वाली।

सबरस कार्यक्रम में अभी आप बेगम अख्तर की गाई ये गजल सुन रहे हैं। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम। आइए अंत में सुनते हैं आबिदा परवीन की ये सूफी रचना।

0: अभी आप सबरस कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर

0: हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 GW का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा

0: कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आज़ादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र

0: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters Tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है।

0: Tihidi block remained inundated while water has entered vulnerable and previously bridged points along the Salandi and Naliya rivers. In Cuttack, Swollen Sapua and Kantia rivers have affected movement on parts of the old Cuttack-Sambalpur road, with agricultural fields waterlogged. Heavy rain has disrupted normal life in several parts of the state, with road communication cut off in many villages of Kuchinda in Sambalpur district and Hatadi in Keonsa district, besides several other areas. Authorities are closely monitoring the situation, particularly downstream areas, as more rainfall is forecast. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: In Jammu and Kashmir, the Amarnath Yatra will remain suspended from both Lal Tal and Pahalgam routes from August the 9th in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. Indian shuttler Smita Chaliha will take on China's Chu Han in the women's singles final of the Korea Masters badminton tournament in Asan tomorrow morning. Smita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final today. Indian lifters continued their impressive performance at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today with a gold and a silver medal in the men's junior 60-kilogram category. Tom Chumite won a total of 3 medals, gold in the overall category, bronze in the snatch and silver in the clean and jerk. He finished with a combined lift of 266 kilograms. Guru Naidu Sanapati bagged 2 medals, silver in the overall category and silver in the snatch, along with bronze in the clean and jerk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Smita Chaliha to face China's Chu Han in women's singles final of Korea Masters tournament. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज़्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की ज़रूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मज़ीद तक़वियत पहुँचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सफारतकारी के तई अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का ख़तरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में स्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्वेहान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फ़ैसलों में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखें और अपने आप से सवाल करें कि किस तरह उनके काम से मुल्क को फ़ायदा हो सकता है और उसकी ज़रूरियात पर तवज्जो दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं और नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सेमीकंडक्टर,

0: ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर शोबे में भारत की कोशिशों का तस्करा करते हुए कहा कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: उधर तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हरीश सालवे और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने आईआईटी दिल्ली में आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का इफ्तिताह भी किया। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की जरूरत पर जोर दिया है। वह आज मुंबई में सहकार नवक्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि डिजिटल लेन देन के फ्रॉड के मामलों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंककारी सेफ्टी को यकीनी बनाने की खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतालिक जराइम से निमटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वजीर दाखिला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया जो शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी और सिक्योरिटी फराहम करेगा।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: हुकूमत ने आज अहम सनअतकारों और इको निज़ाम तैयार करने वालों के साथ सिलसिलेवार कलीदी मुफाहमतनामों का ऐलान किया, जिनमें कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया, कास्ट 24 और स्टार्टअप्स इंडिया काउंसिल शामिल हैं। इन मुफाहमतनामों पर तजारत और सनअत के सनअती और दाखिली तजारत के फरोग के महकमे ने दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने मुतला किया है कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे का मकसद स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना है। डार्विन डायनामिक्स के साथ दस्तखत किया गया मुफाहमतनामा एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की और स्टार्टअप्स इको निज़ाम को मजबूत करेगा। वजारत ने मजीद कहा कि शराकत दारी का मकसद टायर 2 और टायर 3 और देही खित्तों में छोटे कारोबारों को फरोग देकर स्टार्टअप्स इंडिया पहल को वसत देना है। सरकार ने यह वजाहत की है कि सार्फीन के लिए UPI और एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सार्फीन को UPI के जरिए रकम की अदायगी करते वक्त लेन देन पर किसी तरह के चार्ज का सामना नहीं करना होगा। साथ ही बेशतर कारोबारी लेन देन पर भी कोई चार्ज आयद नहीं होगा। वजारत ने कहा है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR चार्जेस का सिलसिला शुरू होता है तो इसका इतलाक एक मखसूस हद के ऊपर महदूद कारोबारी लेन देन पर ही होगा और ये बहुत मामूली शरह होगी। वजारत ने कहा है कि अदायगी और तस्फीये के निज़ाम से मुतालिक एक्ट में तरमीम एक ऐसा बंदोबस्त है जिसका मकसद UPI के तवील मुद्दत तक पायदार रहने, तकनीकी पेशरफ्त और उभरते हुए खतरात के तनाजुर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। भारत ने अपनी माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में एक अहम संग मील हासिल किया है। मुल्क में नस्बशुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली

0: की सलाहियत 300 गीगावाट से तजावुज कर गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नई और काबिले तस्दीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने उजागर किया कि भारत की काबिले तस्दीद तवानाई की सलाहियत में गुज़िश्ता 12 बरस में 400% का इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गैर रवायती ईंधन पर मबनी नस्ब शुदा बिजली की सलाहियत के 300 गीगावाट के संगमील से इस बात का इजहार होता है कि भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली मुकर्रर करदा आलमी अहदाफ के मुताबिक जारी है। जनाब जोशी ने उजागर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत एक साफ सुथरे माहौल के लिए साजगार और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल तश्कील दे रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुल्क में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर फौरी तौर से अमल दरामद के लिए शिरोमणि अकाली दल के मुतालबे का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि सभी को एक मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए, जिसमें बराबर की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया हो। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने सरकर्दा रहनुमाओं की मीटिंग में यह मुतालबा किया था। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी ने एक ऐसी मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी की भी मांग की है जिसमें सभी रियासतों के लिए बराबर की नुमाइंदगी हो। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा है कि शहरियों से ये उम्मीद रखने के बजाय कि वो निज़ाम इंसाफ की जानिब कदम बढ़ाएंगे, इंसाफ खुद शहरियों तक पहुंचना चाहिए। वह आज इंदौर में कानूनी खिदमात से मुतालिक कौमी अथॉरिटी की मगरबी जोन की इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब सूर्यकांत ने कहा कि इंसाफ तक बामकसद रसाई का तकाजा है कि कानूनी इदारे उन लोगों तक पहुंचें जो उनसे रुजू करने से कासिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के तीन अहम सतूनों मुज़ाकरात, अजमत और शमूलियत से मसावियाना इंसाफ के आईनी वादे के लिए अमली माने मैसर होता है।
1: मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यायपालिका को चाहे उसमें हमारा न्यायिक अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है, मैंने आज कहा है कि हम जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जब जाता है, एक हमारी वहां पर बहन नर्स के साथ हमारा कोई जो टेक्नीशियन है, कोई डॉक्टर है, तो जैसे वो उनसे व्यवहार करके एक मरीज के साथ प्यार से बात करके उसकी आधी बीमारी को जैसे उसको अनुभव होता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा, ऐसी ही भावना एक हमारे यहाँ पे न्यायिक मंदिर में अगर कोई आता है तो उसको ये होना चाहिए कि मेरा जो अधिकार है जिससे मुझे वंचित किया गया है वो अधिकार मुझे मिलेगा।
0: झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और दीगर मसाबिकती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जबकि रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के दरमियान बातचीत जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सुप्रीम कोर्ट में एक उज़रदारी दाखिल की गई है जिसमें 14वें जेपीएससी इब्तदाई इम्तिहान को मुबैना बेसाब्तगियों की वजह से मनसूख किए जाने और उसे दोबारा कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई दिनों से एहतजाज कर रहे तलबा मुसलसल अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। मुजाहरीन का कहना है कि सिर्फ लफ्जी यकीन दहानी काफ़ी नहीं है और यह मुजाहरा तब तक जारी रहेगा जब तक पुख्ता नतायज बरामद नहीं होते। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के साथ अपनी बातचीत भी तेज कर दी है। उन्होंने तलबा उम्मीदवारों, वालदेन और समाजी कारकुनों से 10 अगस्त को मुजवजा असेंबली घेराव में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की, ताहम इंतजामिया ने एहतजाज के मकाम के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बहरी तरक्की के सफर में मल्लाहों का अहम रोल रहा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के सरकार के अहद को दोहराया कि हर मल्लाह महफूज रहे, उसका ख्याल रखा जाए और मदद की जाए। जनाब सोनोवाल ने आज मुंबई में मल्लाहों की सिक्योरिटी तहफ़ और बहबूद के मौजू पर एक कौमी मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत मल्लाहों के ताल्लुक से दुनिया के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ़ करने के लिए सफारतकारी के तई अपने मुल्क के अहद का इदा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब पजिश्कियान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमरीका के साथ बातचीत और एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसका मकसद जंग ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कूरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारी

तैयारियां पूरी करता है, ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहेगा। ईरान के सदर ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारतीय मौसमियाती महकमे IMD ने कल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली के हिस्सों में शदीद बारिश हुई। IMD ने कल सुबह कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। आसान में कल कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्यूहान से होगा। अश्मिता सेमीफाइनल में अपनी हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में पहुंची हैं, जबकि क्यूहान ने दूसरे सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया की जिकिम को शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर ज़ोर दिया है। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज़्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की ज़रूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मज़ीद तक़वियत पहुँचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्यूहान से होगा। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉगमा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन।

हीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई जो अनीति कछु भाखों भाई तो मुहि बर जहू भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है, बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है, वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम

0: स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्यायसंगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
3: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेपचा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत कातना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को

0: वो करीब से देखा। यही गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थी। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीना तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नज़रबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियाँ किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलन लेपचा था। तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल तो उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया, तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलन लेपचा का नाम से अभी बन रहा है।
0: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी

0: उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
1: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मन।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थीं स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I'm acting today as a hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ

0: प्रज्वलित की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
1: This is the Congress radio calling on 42.34 meter. Today, we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचिता किपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
2: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया के आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की

दिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वी एस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandaki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishen japtal aur drut tintal mein nibadh hai. Suniye rag Rageshri.
1: Shri Girimallappa Bhajantri begins his Shahnai recital with Rag Rageshri, in which he is presenting 2 compositions set to Japtal and Drut Teen Taal.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री। आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री will now present राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.

0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी धारवाड़ एंड रिलेड फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी

व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।